0: point. They understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

बैक इस और एक गाने के साथ हम आगे बढ़ चुके हैं। जी हाँ, हम इट हैपेंस में इस वक्त आगे आगे चल रहे हैं और हमारे साथ साथ चल रही हैं कुछ खास बातें और बॉलीवुड के कुछ खास गाने भी। अच्छा, कभी ऐसा होता है क्या दोस्तों कि आपको कुछ ऐसा हो कि मैं कोई गाना प्ले करूं और वो गाना अच्छा ना लगे, या आपको लगे कि यार ये लड़की कितना बोलती है, कितनी बातें करती है, आपको मेरी बातें अच्छी ना लगे और आप चैनल चेंज कर दें? होता है ना ऐसा? मतलब सबके साथ होता है, मतलब मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर आप कहेंगे हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हम सब फेस करते हैं या हमने सबने की भी होती हैं। आजकल ये हम लाइफ पार्टनर के साथ भी तो कर रहे हैं। देखिए ना, आजकल लोग लाइफ पार्टनर नहीं, एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं जिसमें उनके मन मुताबिक सारी क्वालिटीज हों। जब भी वो किसी इंसान से मिलते हैं तो सारी चीज उन्होंने एक चेकलिस्ट बनाई होती है ना, वो उनको चेक करनी होती है। मतलब इसमें ये क्वालिटी है कि नहीं, ये है अच्छा, ये नहीं है, ये है ये नहीं है, ऐसे करके उनको वो सारी क्वालिटीज जो उनकी उनके अकॉर्डिंग उनकी चेकलिस्ट है वो चेक करनी होती है। जबकि आपको एक ऐसा इंसान ढूंढना होता है अपनी जिंदगी में जो खुद से प्यार करता हो, जो अपने आप को कम से कम समझता हो, क्योंकि जो इंसान खुद से प्यार करता है, जो इंसान खुद को समझता है, वही तो आपको समझ सकता है और आपसे प्यार कर सकता है। जो इंसान खुद को ही नहीं प्यार करता, खुद ही 10 तरह के एडिक्शंस में पड़ा हुआ है, उसको उसको बियर चाहिए, उसको शराब चाहिए, है ना, उसको सिगरेट चाहिए, एक एडिक्शन है उसको, वो इंसान भला आपसे क्या प्यार करेगा, वो तो खुद ही 10 तरह की प्रॉब्लम में उलझा हुआ है। चेकलिस्ट नहीं, क्वालिटीज मिलाइए। आप एक ऐसा इंसान ढूंढिए जिसमें ये क्वालिटी हो कि वो खुद से मोहब्बत करना, खुद से प्यार करना जानता हो। इसी बात पर आगे बढ़ते हैं एक और गाने के साथ। सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी, दोस्तों आपके साथ है सताक्षी।

सताक्षी के साथ आप रेडियो प्रस्वानी पर हैं इस वक्त दोस्तों, और सताक्षी के साथ इस वक्त आप बॉलीवुड के कुछ खास गानों के साथ कुछ ऐसी बातों को भी हमारे इस ब्रेकफास्ट वाले शो में एंजॉय कर रहे हैं जो हमारे इस शो में चार चांद लगा रही हैं। वैसे आप भी जीवन साथी तलाशने निकल पड़े हैं अगर तो एक ऐसा बंदा ढूंढिए जिसकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो। जी हाँ, मैं बहुत सोच समझ के कह रही हूँ, एक ऐसा बंदा ढूंढिए जिसकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो, फैमिली की वैल्यू करता हो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसकी अपनी कोई वैल्यू हो। आजकल रिश्ते टूटने की यही तो वजह है कि इंसान परिवार को टाइम नहीं देता है, पर फैमिली की वैल्यू नहीं करता है क्योंकि उसकी मेंटल हेल्थ इतनी डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब इन द सेंस वो इतना परेशान है, इतना स्ट्रेस में है कि उसके पास वक्त ही नहीं है उन नेगेटिव थॉट से निकल करके परिवार पर ध्यान देने का। परिवार को तो छोड़िए, उसका ध्यान खुद पर भी नहीं जाता है, बस जिंदगी कट रही है। ऐसे इंसान को अगर आप अपनी जिंदगी में लाते हैं तो आप अपनी जिंदगी को खुद ही मेस बना देते हैं। सोचिए मेरी बात को और सुनते रहिए इट हैपेंस, और आइए आगे बढ़ते हैं एक और गाने के साथ। कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रस्वानी।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

इट हैपन सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो प्रेस 1701 एम पर। और लोगों की एक बहुत ही बढ़िया आदत होती थी अभी तक कि वो फोन करते करते वॉशरूम में जाते थे, मतलब टॉयलेट में काफी देर तक वो फोन पर बात करते रहते थे और काफी टाइम 15-20 मिनट जो है वो उनके वहां पर लग जाया करते थे। अभी तो एक और शौक आ गया रील्स देखने का, सोशल मीडिया पे कनेक्ट रहने का, तो अब ये फोन जो है ये आपके साथ साथ आपके वॉशरूम में, आपके रेस्ट रूम में, आपके टॉयलेट में जाता ही जाता है। देखिए अगर आपको भी ये शौक है तो आपको बता दें कि ये शौक जो है ये आपको बहुत बड़े झमेले में डाल सकता है। जी हाँ, और वो ऐसे क्योंकि एक तो जब आप अपने फोन को अपने रेस्ट रूम में, अपने वॉशरूम में लेके जाते हैं तो आप जर्म्स अपने साथ लेकर आते हैं क्योंकि आप फोन को तो वॉश करते नहीं है ना, उसे आप यूं ही लेकर आ गए तो बहुत सारे जर्म्स जो है वो आपके साथ आ सकते हैं। और इसके अलावा आपको पाइल्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है अगर आप अपने फोन के साथ वॉशरूम में जाते हैं। यही नहीं, आपको मसल पेन भी हो सकता है और बोन्स जो है उनमें प्रॉब्लम हो सकती है, आपको सीधे बैठने में प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रेट बैठने में आपकी बैकबोन जो है वो दिक्कत कर सकती है। इसलिए जरा ये आदत जो है इसको आप सोच लीजिए एक बार कि आपको कंटिन्यू रखनी है या आपको इसको छोड़ देना है, है ना। मामला सीरियस है तो देख लीजिए कि क्या ज्यादा कंफर्टेबल है आपको, ये सारी बीमारियों को आप न्योता देना चाहते हैं या अपने मोबाइल फोन को 10-15 मिनट के लिए खुद से दूर करना चाहते हैं। चॉइस इज योर्स। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी, हमारे साथ सुनते रहिए। इट हैपन्स।

पूरी दुनिया जो है ये फीलिंग्स पर चल रही है. आपकी फीलिंग्स अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, तो आप खुश हैं, और अगर आपकी फीलिंग्स नेगेटिव हैं, सैड हैं, तो आप दुखी हैं, परेशान हैं, ये हम सब समझते हैं. लेकिन एक इंस्टेंट बात पर हमारा ध्यान नहीं जाता है कि इन फीलिंग्स को कभी भी चेंज किया जा सकता है. लाइक अगर आप परेशान हैं, आप कुछ और नेगेटिव देखेंगे, नेगेटिव सुनेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, नेगेटिव चीज पर ही ध्यान देंगे, तो आप और ज्यादा परेशान होंगे, आपकी फीलिंग जो है वो नेगेटिव ही रहेगी. इनफैक्ट अगर आपका पॉजिटिव फील का मूड भी है, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा भी हुआ है, और आप नेगेटिव सुनते हैं, नेगेटिव लोगों के साथ बैठते हैं, तो आप थोड़ी देर में पाएंगे कि आपकी एनर्जी जो है वो और डाउन हो गई है, आपकी वो पॉजिटिविटी कहाँ चली गई आपको पता भी नहीं चलेगा. सेम एज जब आप एक सैड सिचुएशन में होते हैं, आप किसी पॉजिटिव चीज पर अपना ध्यान लगाएं, पॉजिटिव सुने, पॉजिटिव बोलें, पॉजिटिव लोगों के साथ उठे बैठे, तो आप अपनी एनर्जी में एक चेंज पाते हैं, एक पॉजिटिव चेंज पाते हैं उस नेगेटिव फीलिंग के बाद भी. सो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसी फीलिंग में स्टक रहना चाहते हैं या फिर अपनी फीलिंग को इंस्टेंटली चेंज करना चाहते हैं. आप फीलिंग को कभी भी बदल सकते हैं, और ट्रिक भी आपके पास है. बस आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये समझना है कि आपको उसी फीलिंग में रुके रहना है या अपनी फीलिंग को चेंज करके अपने मूड को चेंज करना है. सुनते रहिए इट हैपेंस हमारे साथ, एक और खूबसूरत गाना सिर्फ आपके लिए.

0: अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
7: से। टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
10: Authentic, original, and better than our

रेडियो प्रस्थानी 1701 एम पर इस बेहतरीन गाने के बाद सताक्षी कहती है आपको वेलकम बैक। इट हैपेंस, एंजॉय कर रहे हैं आप मेरे साथ और एंजॉय कर रहे हैं बॉलीवुड के कुछ खास गाने आज हमारे इस खास से सफर में। दोस्तों को बताया इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है उसका ईगो। इंसान का गुरूर या ईगो जब बढ़ने लगता है ना, तो आपने खुद देखा होगा कि इंसान की पर्सनैलिटी में कितने भयानक चेंजेस आते हैं। ऐसे लोग कई बार इंसान को इंसान नहीं समझते, ऐसे लोगों को अक्सर खुद में कमियां भी दिखनी बंद हो जाती हैं। तो जब इंसान की लाइफ में ईगो की एंट्री होती है ना, तो वो अपने विनाश की गाथा जो है वो खुद ही लिख बैठता है। अगर आप में भी ये ईगो आना शुरू हो गया है, तो हम आपसे कहते हैं ना कि जिंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो जिस बात को लेकर आप में ईगो है, सबसे पहले ये चेक कीजिए कि क्या वो चीज परमानेंट आपकी जिंदगी में रहने वाली है जिस बात का आपको इतना घमंड और ईगो है। अरे आप तो खुद नहीं रहने वाले इस दुनिया में परमानेंट, चीजें क्या रहेंगी। आइए इसी बात पर आगे बढ़ते हैं एक और गाने के साथ। कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्वानी, सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं। जी हाँ, इट हैपेंस।

फ्रेंड्स, ये था आज एक और हमारा आपका इट हैपेंस पर साथ, कुछ खास बातों बेहतरीन गानों के साथ। ऐसे ही साथ के साथ हम हर रोज आपसे मिलते रहे हैं और वादा है मेरा कि हम आगे भी हर रोज आपके साथ इसी साथ के साथ जुड़ते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे। लेकिन आज के सफर से अब इजाजत चाहूंगी क्योंकि अब आज का वक्त जो है वो इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने का वक्त है। लेकिन कल जरूर मिलेंगे इसी सफर में एक बार फिर से, और जब तक हम और आप कल मिलते हैं अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा। चलिए आज के सफर से अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

ਸ਼ਿਕਲ ਜੀ ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਔਲਖ ਸ਼ਰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ 101 FM ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹਮ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰੁਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰ ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਮਿਤ ਉਸਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਧਾਦਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਮਿਤ ਉਸਮਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ उधर ईडी ने लुधियाना विच छापेमारी की दसा जा रहा है कि जिस व्यक्ति के घर रेड मारी गई है वह पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया का भांचा है। रेड मंगलवार तो ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि गमाडा विच चल रही रेड का हिस्सा है। इस तो अलावा चंडीगढ़ विच गमाडा के सबका चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ते सीनियर आईएएस अफसर राजीव गुप्ता के घर भी छापेमारी की गई। ईडी वालों मंगलवार सवेर तो दिल्ली मोहाली चंडीगढ़ पंचकूला ते लुधियाना विच 26 थावां ते कारवाई कीती जा रही है। मोहाली स्थित पुड्डा भवन विच ईडी दीआं टीमां पूरी रात रिकॉर्ड फरोलदीआं रहीआं। इस तों इलावा गमाडा हैडक्वार्टर दे कुछ हिस्सिआं नूं सील कर दित्ता गिआ। दूजे पासे आम आदमी पार्टी दा दोष है कि केंद्रीय एजेंसियां दीआं कारवाईआं जरिए पंजाब सरकार दे अफसरां ते दबाव बणाया जा रहा है ते गमाडा दे कामकार विच अड़िक्का पाउण दी कोशिश कीती जा रही है। उधर पंजाब विधानसभा चोणां तों पहलां सियासत विच वड्डी हलचल देखण मिली। दरअसल चोणां नेड़े आउण दे नाल ही वख-वख एजेंसियां वल्लों चोण सर्वेखण कीते जा रहे ने। इसे कड़ी विच मैट्रिक एजेंसी वल्लों दुआबा खेतर विच कीते गए चोणां तों पहलां सर्वेखण विच वख-वख सियासी दलां दीआं संभावित सीटां दा अनुमान सामने आया। सर्वेखण मुताबिक दुआबा खेतर विच कुल 23 विधानसभा सीटां विच आम आदमी पार्टी अते कांग्रेस नूं 7-7 सीटां मिलण दा अनुमान प्रगटाया गया। उत्थे भारतीय जनता पार्टी नूं 6 अते श्रोमणी अकाली दल नूं 3 सीटां मिलण दी संभावना जताई गई है। उधर मेलबर्न शहर विच संघी पुलिस ने एक 65 साल आस्ट्रेलियाई नागरिक नूं इस्लामिक स्टेट समूह की वफादारी का प्रण लैण अते इंटरनेट ते अतवादी समगरी फैलाउण दे दोष हेठ गिरफ्तार किया। अधिकारियों अनुसार व्यक्ति ऑनलाइन माध्यम राही ISIS की प्रचार समगरी का मुख वंडण वाला सी। पुलिस अनुसार 65 साल दोषी जिसका नां का खुलासा नहीं होया सी नूं बुधवार मेलबर्न की अदालत विच पेश किया जाना सी। उसते एक अदालत अतवादी संगठन का मैंबर होण ते एक एनक्रिप्टड मैसेजिंग ऐप राही हिंसक अतवादी समगरी वेचण दे दोष लगाए गए ने। इन अपराधां लई वध तों वध 10 साल की कैद की सजा हो सकती है। अधिकारियों ने दस्सिया है कि इस व्यक्ति ने 2015 तो 2020 दे दरमियान 10,000 तो वध फाइलां भेजियां सन जिस विच फांसी तशद्दद ते आईएस प्रचार नाल संबंधित समगरी शामिल सी। इस तों इलावा उसने कानून लागू करन वाली एजेंसियां दी पकड़ तों बचण दे तरीके अते वड्डे पद्धर ते हमले करन दीआं हदायतां वालीआं गाइडां वी शेयर कीतीआं हन। उधर रूस ने दिन दिहाड़े यूक्रेन की राजधानी कीव ते ड्रोना नाल जबरदस्त हमले किते। ए हमले यूक्रेन दे राष्ट्रपति वल्लों संयुक्त राष्ट्र दी जनरल असैम्बली विच विश्व नेतावां नूं संबोधन करन तों कुछ घंटे पहलां होए हन। रूस ने रोजाना दे हमलां दी लड़ी विच ताज़ा हमले दौरान कीव विच 2 लोकां दी मौत हो गई ते 23 जख्मी हो गए जदके शहर दे उत्तर काले धुएं दे गुब्बार छा गए। अधिकारियों ने दस्सिया कि ड्रोना कारण कीव ते यूक्रेन दे होर हिस्सिआं विच अग लग गई ते इमारतां नूं नुकसान पहुंचिआ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਵਿਚ ਬਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹੈ biswani@biswani.com। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਰੇਡੀ biswani 101 FM। ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जाणो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार
1: सांसों की माला पे समरू में।
2: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शांडिलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शांडिलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
3: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
2: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

हेलो वेलकम आदाब जी सत श्रीकाल जी। तुसी बने होए जी थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.0 FM ते जी आर जे संदेश अलग दिनाल से बन चुके हो। ढेर सारिया गल्लां करन दा सारा बहुत ही सोहना जिहा वेला शुरू हो चुका है जी। ते इन्हां गल्लां करनियां ने इस वेले दे दौरान असी ढेर सारिया थोड़े नाल थोड़ियां मेरिया अपनियां सब दियां कुछ यादां तां असीं कर लवांगे, कुछ किसे दियां गल्लां कर लवांगे, कुछ गीत ज्यादा सुनांगे। फिलहाल थोड़ी पसंद है, मेरी पसंद है, सब दी पसंद है, रले मिले नवे पुराने ते सब कुछ होगा। बस थोड़े सुनेहियां दा तां इंतजार है, तो फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। रेडियो बिसौनी 101.0 FM साडे फेसबुक पेज है जी, bisoni@bisoni.com साडी ईमेल आईडी है, जरिया जिहड़ा भी तुहानूं चंगा लगदा है ओह अपनाओ, पर साडे नाल गल्लबात जरूर करो। फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। मैं हुण वापस आउंदी हां।

बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 101 एम ते जी आरजे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो फिल्मा दे हिट या फ्लॉप होण दा हिसाब रखते हूं ता तुहानू इस नाल जुड़े कुछ टर्म्स ते इसका गणित जरूर पता होना है, जिवें ब्लॉकबस्टर ते ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर विच की फर्क हुंदा है, स्लीपर हिट की हुंदा है, नहीं पता तो चलो इसे ते चर्चा कर लेने। तो देखो जेकर तुहाडे दिमाग विच फिल्मी कीड़ा हैगा है तां बॉक्स ऑफिस दे नाल जुड़े सवाल परेशान करते होणगे, जिवें ब्लॉकबस्टर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर विच फर्क, फुटफॉल की हुंदा है, किवें तय हुंदा है कि फिल्म हिट है या एवरेज है, स्लीपर हिट की हुंदी है, वगैरह वगैरह वगैरह वगैरह। जेकर तुसी भी अपना फिल्मी जीके अपडेट करना चाहते है कि हुण मैं तुहानू इहो जिहे गल्लां दसन लगूंगी जानी हैगी है ना, जिन्हां नूं जान के तुसी कहोगे कि सच्ची इस तरह भी हुंदा, सच्ची हुंदा हुंदा, दस दिओ उस बारे, पर पहलां तुसी सुन लो एह गीत।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्सऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्सऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, ओम्सऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्सऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो संदेश अलग दिनाल बने हुए। देखो सब तो पहला गल करते हैं फिल्म के बजट की। देखो किसी मूवी का बजट उसके हिट या फ्लॉप होने के पैमाने का सब तो वड्डा फैक्टर होंदा। फिल्म की कैटेगरी तय करन तो पहला कुछ चीजा समझना जरूरी होंदिया ने, जिवें लैंडिंग कास्ट, इस विच प्रोडक्शन दे खर्चे शामिल होंदे ने, जिवें एक्टर्स दी फीस, क्रू, सैट दे खर्च वगैरह वगैरह वगैरह। दूसरा प्रिंट ते विज्ञापन यानी एडवरटाइजमेंट, ते इस विच ओ खर्चा होंदा है जो किसी मूवी दी मार्केटिंग ते प्रमोशन विच खर्च होंदा होंदा है। हुण इस तों बाद जानना तुसीं इह हैगा कि किवें तय होंदा है हिट या फ्लॉप, इही दसदे आं। पप्पी लैगी सुणो।
1: Black light is strong.

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं, दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड सनी बैंक हिल्स क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365 दैट्स 3273-7365 और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

हाँ जी जी अनु जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रह्मवाणी 101.1 FM ਤੇ ਆਰ ਜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਲਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲੋਪ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਜਾਣਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲਈਏ। चलो डिजास्टर तो करते हैं। तो देखो डिजास्टर फिल्म केड़ी हुंदी है, तां जिहड़ी फिल्म अपनी लागत दा 50% भी नहीं कमा पाउंदी ना, 50% भी हाफ भी कमाई नहीं कर पाउंदी, यानी कि फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ दे विच बणी आ 50 लाख भी ना कमाई कर सके तां ओह डिजास्टर हुंदी है। इही तां जानना सब तों ज़्यादा जरूरी है। तां डिजास्टर तों शुरुआत कर लईए। चलो डिजास्टर तो करते हैं। तो देखो डिजास्टर फिल्म केड़ी हुंदी है, तां जिहड़ी फिल्म अपनी लागत दा 50% भी नहीं कमा पाउंदी ना, 50% भी हाफ भी कमाई नहीं कर पाउंदी, यानी कि फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ दे विच बणी आ 50 लाख भी ना कमाई कर सके तां ओह डिजास्टर हुंदी है। फ्लॉप, फिल्म अपने बजट तो

करोड़ उसने कमाई कर ली है ना, हिट अपनी लागत तो घट 50% तो ज्यादा का मुनाफा। जिम्मे 1 करोड़ बनी है तो 1.5 करोड़ तो उपर दी जो कमाई कर ले तो हिट होंगी है। तो सुपर हिट ये फिल्म अपनी लागत तो दुगनी कमाई करती है तो वह सुपर हिट होंगी है। तो ब्लॉकबस्टर फिल्म फिल्म अपनी लागत तो 3 गुणा या उस तो भी ज्यादा की कमाई कर ले ब्लॉकबस्टर हो जाती है। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म वो ये होंगी है फिल्म पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दे लागत तो 4-5 गुणा की ज्यादा कमाई करे।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435, याद रहे 0400664435, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number.
1: Honey, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: Yes, baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ. Quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck. और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए.
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
2: MC's Indian and Island Food, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999. ओपन 7 डेज. फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au. 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक. फोन नंबर 3804-3818. दैट्स 3804-3818.
3: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 101 ते जी आर जी संदेश अलग दिनाल से बने हुए इस तो बाद हुण आपां गल करदे आं नॉन थिएटरिकल कमाई दी। अजकल फिल्मा रिलीज होने तो पहला ही पैसा कमा लैंदियां ने, एक प्रॉफिट राइट्स बेच के मिलता है जिवें सैटेलाइट राइट्स, इस जो चैनल से राइट्स लैंदे ने या वो मूवी दिखाते रहते हैं, डिजिटल राइट्स ओटीटी प्लेटफॉर्म्स मूवी बेची जाती है, म्यूजिकल राइट्स गाने तो कमाई होती है। फिर होंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट, देखो कई बार फिल्म ना बॉक्स ऑफिस से कमाई के मामले में एवरेज होंगी है पर इन्होंने राइट्स की वजह न प्रोड्यूसर मुनाफा कमा लेंगे ने, पर मूवी के हिट फ्लॉप या एवरेज होने का वर्डिक्ट बॉक्स ऑफिस कमाई के हिसाब न ही तय होंगे।

का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

हाँ जी तो वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वन सर वाने दे जी आर चे संदेश अलग दिन तो बने हुए हूँ। देखो फुटबॉल क्यों होंदा है इस दे विच महत्वपूर्ण, इस बारे भी गल कर लेने, इंपॉर्टेंट क्यों होंदा है। तो कमाई तो इलावा ना एक होर अहम पैमाना होंदा ओही होंदा है फुटफॉल, यानी कि किन्ने लोगों ने टिकट खरीदी हैगी है। मूवी दे टिकट अजकल महंगे हो गए ने, इसलिए 100 करोड़ रुपए कमाना सौखा हो गया। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनन दे लई ए भी देखा जाता है कि किन्ने लोगों ने टिकट खरीदे हैगे ने ते मूवी देखने लई लोग गए हैगे ने। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मां ओ हुंदियां ने जिन्हां दे विच फुटफॉल भी ज्यादा हुंदी है, जिवें शोले हुण तुहानू है कौन अते हम आपके है कौन ते धुरंधर भी इस कैटेगरी दे विच है शोले तो इलावा।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो दसवानी वन सन वन एम ते जी आर छे संदेश अलग दिन से बने हुए हूं। जी मैं वर्ड की गल कर रही हूं, शायद कई ने पहली बार सुने होना, तो उस वर्ड का नाम है जी स्लीपर हिट। स्लीपर हिट की हुंदा है? स्लीपर हिट तो सिंपल भाषा विच समझा जाए तो स्लीपर हिट वह फिल्म हुंदी है जो बिना किसी वड्डे शोर शराबे भारी कम पर कम प्रमोशन या सुपरस्टार दे रिलीज हुंदी है। शुरुआत विच इसकी कमाई बहुत घट पर हौली हौली वर्ड ऑफ माउथ ते दम ते फिल्म रफ्तार फड़दी है ते फाइनली बॉक्स ऑफिस ते ब्लॉकबस्टर साबित हुंदी है। जिवें सैयारा, कांतारा, बारहवीं फेल, द कश्मीर फाइल्स वगैरह। स्लीपर हिट विच कॉन्टेंट ही किंग हुंदा है।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजा नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो।
1: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असीं 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असीं होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तों भी अग्गे दे समें वास्ते इक नवीं खेड इमारत जिस विच इक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असीं तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असीं 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असीं होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तों भी अग्गे दे समें वास्ते इक नवीं खेड इमारत जिस विच इक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असीं तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द

उम्मीद हैगी है कि थानू ये सब कुछ जरूर समझ आ गया होना है ना, जरूर समझ आ गया होना, क्योंकि जेडे बॉलीवुड लवर है कि ने, बॉलीवुड नहीं मूवी लवर है कि ने, बेशक को कोई भी बॉलीवुड दी देखते हो, टॉलीवुड दी देखते हो, हॉलीवुड दी देखते हो, साउथ दी देखते हो, उन्होंने ये पॉइंट्स इंटरेस्टिंग लगते होंगे या नहीं, तो थानू जरूर वधिया लगे होने हैं। तुसीं बाकी जरूर दसो सानू कि थानू किस तरह की जानकारी तुसीं चाहते है। क्यों रेडियो बिस्वानी 107.1 FM साडा फेसबुक पेज है जी, तो bisswani@bisswani.com साडी ईमेल आई डी है। सर जेड़ा भी अपनाना चाहते हो अपनाओ, साडा गल्लबात जरूर करो। बाकी कल कर दे मुलाकात, रखो अपना ख्याल, सत श्री अकाल।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: पाती है।
1: Hi, this is Amitabh Bachchan
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: Hi guys, I'm Madhvi from the Meet Brothers आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi, this is Salman Khan और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi, this is Deepika Padukone और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
10: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
11: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
12: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
11: अच्छा, वो क्या?
12: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
11: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
12: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
13: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शांडिलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शांडिलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
14: सियाराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
13: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर।
11: यार, सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं, अनऑर्गेनाइज हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
15: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
11: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
15: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
16: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
17: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
16: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
17: अरे ओमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
16: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
17: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
16: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
17: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
3: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
3: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644 35 पर, याद रहे 04006444 35 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
6: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है, और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपो

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असीं होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असीं रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तों इलावा होर वी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
1: ओए राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमीग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली to minimize it.
2: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

Hey, what language is this? What are you talking about?

दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निवा के साथ। हाउ आर यू फीलिंग टुडे? जी हाँ, कैसा फील कर रहे हैं आज आप? क्या आप भी वो फील कर पा रहे हैं, वो जो फेस्टिविटीज है हवाओं में? जी हाँ, क्योंकि फेस्टिव सीजन जो है वो अब दूर नहीं है, तो मुझे तो पता नहीं, अभी से ही वो मिठाई की खुशबू भी आ रही है, वो मीठे की खुशबू भी आ रही है, और साथ में वो खूबसूरत खूबसूरत लिबास जो कि हम फेस्टिवल सीजन में पहनते हैं, उनका भी एकदम एकदम पूरा अच्छे से मेरे दिमाग में पूरी चरित्र जो है, चित्र जो है, वो चल रहे हैं। जी हाँ, सो यहाँ पर बहुत कुछ चल रहा है मेरे दिमाग में, एंड ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक बढ़िया से गाने के साथ, लेकिन गाने से पहले कुछ और होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो हम हमेशा करते हैं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट डीप ब्रेथ एक्सरसाइज, एक ऐसा हेल्दी रिचुअल जो हम प्रैक्टिस करते हैं अपने प्रोग्राम की शुरुआत में। और मैं हमेशा कहती हूँ कि सिर्फ प्रोग्राम की शुरुआत में मैं ही नहीं करती हूँ, आप भी किसी चीज की शुरुआत कर रहे हो तो लंबी गहरी सांसों के साथ शुरुआत कीजिए, और फिर देखिए कोई भी स्ट्रेस आपको किसी चीज का नहीं होगा और प्रोडक्टिविटी एकदम मैक्सिमम होगी। जी हाँ, तो आइए सबसे पहले वही करते हैं। क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, और ऐसे ही अच्छा फील करते करते शुरुआत करते हैं एक बढ़िया से गाने के साथ, और ये है कॉकटेल 2 का गाना जो कि नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम कर रही है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, और इसी के साथ उसी का गाना जब तलक आप सबके लिए।

जी हाँ दोस्तों, तो लटके झटके तो चलते रहेंगे यहाँ पर। जरा मौसम की बात कर ली जाए, क्या कह रहा है वेदर, क्या कह रहा है मौसम। सबसे पहले 25 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर तक रहा, वहीं अगर अभी की बात की जाए तो 23.9 डिग्री सेल्सियस के करीब है। फील आपको हो रहा है 22.3 डिग्री सेल्सियस के करीब। मौसम सुहाना और दीवाना भी आपको बना सकता है, सो मौसम से बच के रहिए। जी हाँ, इसी के साथ रात की बात की जाए तो 17 डिग्री सेल्सियस तक तापमान आप देख पाएंगे। और जैसे मैंने कहा था कि बारिश जो है वो आज होगी, आज 90% चांसेस थे। एंड व्हेन आई से 90% मतलब ब्रिस्बेन के 90% इलाके में बारिश जो है वो पूरे दिन में कभी ना कभी होने वाली थी, जो कि हुई भी है और इनफैक्ट अभी भी होती हुई नजर आ रही है आपको कहीं ना कहीं। जी हाँ, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, थोड़ी ज्यादा हो सकती है, पर बारिश की झलक सबको मिलेगी देखने को। जी हाँ, और इसी के साथ एयर क्वालिटी है एकदम एक्सीलेंट। जी हाँ, वहीं अगर बात की जाए कल यानी फ्राइडे की, तो सिर्फ 20% चांसेस है बारिश होने के, मतलब आपको बारिश से राहत मिल सकती है विद 25 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर। बादल रहेंगे आसमान में थोड़े और सूरज भी निकलता हुआ आपको नजर आएगा बादलों में से थोड़ा बहुत बीच में। जी हाँ, सैटरडे की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर, अगेन 30% चांसेस बारिश के, और ये चांसेस जो वो मुझे इतने ज्यादा नहीं दिख रहे हैं, मतलब इसमें भी फेर बदल हो सकता है कल तक। सो या ये है मौसम का हाल, और उसके आगे मुझे बीच में दिख रहा है, लेकिन बारिश मुझे बीच में होती हुई दिख रही है अगेन, काफी ज्यादा आगे भी। सो उसके लिए रेडी रहिए, क्योंकि अगर ज्यादा नहीं होगी तो थोड़ी सी हो सकती है। अगर आपके इलाके में नहीं हो रही है तो आप ट्रैवल करके थोड़ा आगे जाएंगे तो शायद वहां पे हो रही हो, तो छाता अपने साथ जरूर रखिए, बिकॉज मौसम जो है वो कह रहा है कि मैं तो अपने ही मदहोशी में चलने वाला हूं, तुम ट्यून इन करो मेरे हिसाब से। तो ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए मौसम के साथ ट्यून इन करने में। इट्स जस्ट दैट कि आपको सिर्फ और छाता अम्ब्रेला जो है वो अपने साथ रखना है, दैट्स इट। इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, intelligent हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अगे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
4: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब जरा बात कर लेते हैं आपकी फरमाइशों की। जी हाँ, प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है और बाकी की गपशप में इससे पहले हम लीन हो जाएं, हम आपको बता देना चाहते हैं कि कैसे आप अपने फेवरेट गाने हमारे इस प्रोग्राम में फरमाइश कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो और तो और किसी को डेडिकेट भी कर सकते हो। सो व्हाट यू गोना डू इज आप अपना फोन उठाने वाले हो और एक नंबर डायल करने वाले हो, वो नंबर है +9182888717701। आई रिपीट, +9182888717701। तो बस फिर जल्दी से फोन उठाइए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश। और जब तक आप भेज रहे हैं हमें अपनी फरमाइश, हमारी तरफ से एक और गाना आप सबके लिए।

कल ही की बात है, मैं सोशल मीडिया चला रही थी और उसके बारे में, आई वाज लाइक या इट इज काइंड ऑफ ट्रू. मतलब ये सबके साथ नहीं होता है, कोई कोई लोग जो है वो बना लेते हैं वो आदत. और अब आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा बात भी बता दो क्या है, क्योंकि तभी तो हमें समझ आएगा तुम क्या कह रही हो. वहां पे लिखा हुआ था कि आई हैव बीन स्टडिंग सिंस आई वाज 4. जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा. आई हैव बीन स्टडिंग सिंस आई वाज 4 एंड स्टिल हैवंट गॉटन एडिक्टेड टू इट. दैट्स कॉल्ड मतलब ऐसे कहते हैं ना, एडिक्शन जो है हो जाती है. अगर आप कोई चीज जो है वो करते रहते हो तो आप एडिक्टेड. बता दो क्या है, क्योंकि तभी तो हमें समझ आएगा तुम क्या कह रही हो. वहां पे लिखा हुआ था कि आई हैव बीन स्टडिंग सिंस आई वाज 4. जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा. आई हैव बीन स्टडिंग सिंस आई वाज 4 एंड स्टिल हैवंट गॉटन एडिक्टेड टू इट. दैट्स कॉल्ड मतलब ऐसे कहते हैं ना, एडिक्शन जो है हो जाती है. अगर आप कोई चीज जो है वो करते रहते हो तो आप एडिक्टेड हो जाओगे. सो आपको नहीं करनी चाहिए. ये

भी आपको कितनी आदत हुई है पढ़ने की, बहुत लोग हैं बट देर आर मेनी पीपल जिनको पढ़ाई पसंद नहीं है, किताब देखते नहीं जाती है और दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है, और ये तादाद जो है इन लोगों की वो बहुत ज्यादा है। सो सेल्फ कंट्रोल कहिए या कुछ भी कहिए, लेकिन अगर आप किसी चीज के एडिक्टेड नहीं होना चाहते तो आप नहीं होंगे, मतलब आप पढ़ाई के एडिक्टेड नहीं होते, आप सोचिए और किस चीज के। तो अगली बार से अगर आप कुछ भी कर रहे हो गड़बड़ और आपके घर वाले आपको बोले नहीं नहीं नहीं ये नहीं करना है, तुमको इसकी एडिक्शन हो जाएगी, तो आप यही वाला एग्जाम्पल दीजिएगा कि बचपन से पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी तक एडिक्टेड नहीं हुआ, इसका क्या एडिक्शन हो जाएगा मुझे। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा तुम ना गलत बता रही हो। बहुत फन एंड गेम्स, हंसी की बात है, हंसी में छोड़ देनी है, पढ़ना जरूरी है, और अगर इसकी एडिक्शन आप डाल सकते हो तो डाल लीजिए, क्योंकि यही एडिक्शन आपके सबसे ज्यादा काम करने वाली है और यही आपके सपनों को पूरा भी करने वाली है। सो डू दैट। यहाँ पे एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवीं क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असीं होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असीं रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवीं क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है तां जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलां विच अग लगदी है। इह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ताजे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
2: ओए राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul ji nu on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आज नीविया के साथ। दोस्तों जब किसी ने कहा है कि ह्यूमंस गॉट नो चिल, किसी ने ठीक ही कहा है, क्योंकि इंसानों को चैन नहीं है, उनको चुल है, और ऐसी चुल है जो कि उनको गड़बड़ करने पर मजबूर कर देती है। लेकिन बहुत सारी चीजें उनके साथ गड़बड़ हो जाती है लेकिन फिर भी वो चुल नहीं जाती है। एंड आई थिंक उस चुल की वजह से ही इंसान जो है वो इतना आगे तक पहुंच गए हैं। हमने सब कुछ जो है वो देख लिया है, खोज कर ली है, लाइट बना ली, यू नो एवरीथिंग, वी हैव एवरीथिंग, प्रीटी मच एवरीथिंग राइट नाउ। अब तो हम तरीके सोच रहे हैं कि उसको डिस्ट्रॉय कैसे किया जाए। तो अब हमने सब कुछ बना लिया तो हमने फिर AI भी बना दिया कि अच्छा कुछ ऐसा भी तो होना चाहिए जो सब कुछ डिस्ट्रॉय भी कर दे एक टाइम आने पर। सो अब हमने AI बना दिया है। बट वाई एम आई टॉकिंग अबाउट इट? वेल आपको तो बताइए कि इसमें मेरा पर्सपेक्टिव क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि मेडिकल सेक्टर के अलावा AI और रोबोट्स जो है वो हर जगह गड़बड़ कर सकते हैं और हमें उनकी जरूरत नहीं है। तो यहीं पर मेरी बात जो है वो एकदम सही प्रूव होती है, क्योंकि यहां पर जो मैं आपको बताने वाली हूं वो किसी रोबोटिक फाइट के बारे में नहीं बताने वाली हूँ, रोबोटिक ओलंपिक्स के बारे में मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ, यू नो वेट लिफ्टिंग के बारे में नहीं बताने वाली हूँ, किसी ऐसे रोबोट के बारे में नहीं बताने वाली हूँ जो बहुत बड़ा कारनामा करता है, बल्कि मैं एक ऐसी फाइट के बारे में आपको बताने वाली हूँ जिसमें एक रोबोट और एक इंसान एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इट्स MMA स्टाइल ऑक्टेगन फाइट। जी हाँ। सो यहां पर एक बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंसर फ्रैंकी लेपेना जो है वो उतरे रिंग में एमएमए स्टाइल ऑक्टेगन फाइटिंग के लिए और उन्होंने फेस किया आरईके, अ 6 फुट ह्यूमनॉइड रोबोट को। जी हाँ, आपने सही सोचा, सही समझा आपने, किसी इंसान के साथ नहीं, उन्होंने एक रोबोट के साथ फाइट की। जी हाँ, और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो है वो वर्ल्ड की पहली ह्यूमन वर्सेस रोबोट फाइट थी। नाउ लिपन्ना जो है, जो कि इन्फ्लुएंसर है जिन्होंने ये फाइट की रोबोट के साथ, वो उनका नीश जो है वो लिटरली कॉमेडी है और वो कॉमेडी कंटेंट के लिए जाने जाते हैं। लेकिन यहां पर उनके दिमाग में पता नहीं क्या आया, अफलातूनी ख्यालात, उन्हें लगा कि ओ यू नो व्हाट, बहुत कॉमेडी हो गई, अब थोड़ी हड्डियां तोड़वा लेता हूं। एंड दैट्स व्हाट ही डिड, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही डिड। जी हाँ, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोगों को रोबोटिक्स वर्सेस ह्यूमन फाइट चाहिए, ओके लेट मी गिव इट टू यू, एंड दैट्स व्हाट ही डिड। जी हाँ, सो अगेन जब ये फाइट शुरू हुई तो ऐसा लग रहा था कि हाँ, वो अच्छा कॉम्पिटिशन जो है वो दे रहे हैं उस रोबोट को। उन्होंने काफी सारे पंचेस जो हैं वो आरईके को दिए, जो कि ह्यूमनॉइड रोबोट था रेक, उसको उन्होंने काफी सारे पंचेस मारने में जो है वो कामयाब हो गए। लेकिन फिर उसके बाद रोबोट ने इवेंचुअली जो है वो बता दिया लिपन्ना को कि यू नो व्हाट, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, व्हाट आर यू इवन थिंकिंग, क्यों उतरे हो तुम यहां पर, तुमको लग रहा है ये 2-3 पंच मार के तुम मुझे यहां से बाहर फेंक दोगे और मैं गिर जाऊंगा। लेट मी टेल यू, आई एम अ रोबोट एंड यू आर अ ह्यूमन, मुझे पेन नहीं होता है, तुम्हें होता है। और फिर उसके बाद उस रोबोट ने लिपन्ना की जो छुट्टी की, जो धुलाई की, और उसको यहां से वहां से वहां से वहां पे एकदम फेंक ही डाला। जी हाँ, मतलब एकदम वो क्रैश ही हो गए एक जगह पर जाकर, और ये फुटेज जो है वो मिलियंस ऑफ व्यूज जो है वो इसको मिल गए हैं। लोग जो है कह रहे हैं वाओ वाओ व्हाट अ मैच, कुछ लोग कह रहे हैं कि बस यही होना रह गया था, कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है इस दुनिया में। जी हाँ, सो ख्याल डिफरेंट डिफरेंट है, बट मैं इतना ही कहूंगी कि लोग जो है फनी है, और क्या पड़ी थी इस बंदे को, अच्छा भला कॉमेडी कर रहा था, तोड़वा ली 2-3 हड्डियां। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

दोस्तों एक चीज तो बाकी है, आई लव हाउ क्रिएटिव टूडेज जनरेशन इज. जी हाँ, जो ये वाली जनरेशन है ना, वो बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव हो गई है. मतलब ऐसे ऐसे तरीके ढूंढते हैं चीजों को करने के लिए, जो हमारे जमाने या फिर उससे पहले के जमाने वालों ने कभी सोचे भी नहीं होंगे. सो एक वीडियो जो है वो इंटरनेट पर वायरल हो रही है, एंड आई हैड टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि लिटरली वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है. सो अपेरेंटली वो वीडियो है एक वेडिंग की, जहां पर जो ग्रूम और ब्राइड है, उन्होंने अपने एक पेट जो कि डॉग है, जी हाँ, शीप डूडल, उसके गले में उन्होंने ग्रो प्रो जो है वो पहना दिया है, और वो पूरी की पूरी वेडिंग में घूम रहा है. सो बेसिकली उन्होंने कैमरामैन को नहीं किया था हायर, मतलब उन्होंने सिर्फ अपनी पिक्चर्स के लिए कैमरामैन को हायर किया था. वेडिंग में क्या चल रहा है उसकी वीडियोस बनाने के लिए कोई भी कैमरामैन हायर नहीं किया था, क्योंकि अपेरेंटली उन्हें लगा कि ये काम तो उनका डॉगी ही कर देगा. उन्होंने अपने डॉगी को गोप्रो पहना दिया गले में और उसको छोड़ दिया, बेटा तुम जाओ, जो भी तुमको कैप्चर करना है तुम कैप्चर करके लेकर आओ. एंड गेस व्हाट, दैट्स व्हाट ही डिड. वो यहां से गया, वहां से गया, वहां से गया, वहां से गया, और जितनी भी जगह वो गया सब उसको हाय कर रहे थे, हेलो कर रहे थे. अब ऑफकोर्स एक शीप डूडल अपने गले में गोप्रो लेके घूमेगा तो लोग तो एक्साइटेड होंगे, राइट? एंड दे वर लाइक वाओ इट्स सो क्यूट, और ऐसे ऐसे करके. एंड क्योंकि वो एक डॉग था तो सब उससे बात भी कर रहे थे. अब आप सोचिए, एक वीडियोग्राफर को हायर करते तो लोग इतने अच्छे से बात नहीं करते, सब अपनी चीजों में जो है वो मस्त मगन होते हैं. और अगर वो शादी इंडियन होती तो सब लोग खाने में बिजी होते. अगर वो सीन एक इंडियन वेडिंग का होता ना, तो वो डॉगी हर किसी को सिर्फ एक ही चीज करते हुए पकड़ पाता, और वो है खाना खाते हुए और खाने में नुक्स निकालते हुए. जी हाँ, सो यू नो व्हाट, दैट्स व्हाट इंडियन पीपल लाइक्स टू डू. खाना खाते भी, और फिर कहते हैं अगर इसमें थोड़ा ऐसा होता तो अच्छा लगता. जी हाँ, मतलब कभी तारीफ पूरी तरह नहीं करते, कभी तारीफ करते भी है, ऐसा नहीं है सब नहीं करते, कुछ लोग करते भी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं इसमें ना ऐसा होता तो ज्यादा अच्छा होता. जी हाँ, तो अगर वो शीप डूडल जो है, अगर वो डॉगी इंडियन वेडिंग में घूम रहा होता तो ये सब कैप्चर करता, बट अपेरेंटली वो एक वेस्टर्न वेडिंग में घूम रहा था तो सब उसको हाय कर रहे थे, हेलो कर रहे थे, उसको यू नो हग कर रहे थे, और बहुत सारी और भी चीजें प्यारी प्यारी उसके सामने कर रहे थे. तो बेसिकली उसने किसी भी वीडियोग्राफर से ज्यादा काम किया, और वो सारा कोलाज बनाकर उस ग्रूम और ब्राइड ने अपनी सोशल मीडिया पर डाल दिया. एंड गेस व्हाट, वो वायरल हो गए, उनकी वेडिंग वायरल हो गई है, बिकॉज अपेरेंटली उन्होंने किसी वीडियोग्राफर पर विश्वास करने के बजाय अपने शीप डूडल, अपने डॉगी पर विश्वास किया. That's a great idea. पैसे भी बच गए, काम भी हो गया, और तो और मजेदार सा aesthetic भी add हो गया. जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks Atanya, I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Mogill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Mogill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
5: Hi, this is Amitabh Bachchan.
6: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
7: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
8: Hi, this is Salman Khan.
9: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
10: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
11: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
12: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani.
13: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
14: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
15: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
16: दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। है किंग वाइब मेरे आर्जिन के साथ। तो दोस्तों, लव हाइपोथेसिस एक ऐसी मूवी जो कि काफी फेमस नॉवल पे बनी है, सेम इसी नाम की, और काफी ज्यादा बात इसके बारे में हो चुकी है। अमेज़न प्राइम पे ड्रॉप कर दी गई है। जी हाँ, और अमेज़न प्राइम पे इसका ड्रॉप होना काफी ज्यादा लोगों को अच्छा लग रहा है। जी हाँ, इसमें लिली रेनहार्ट है और साथ में है एक बहुत ही गॉर्जियस हीरो। जी हाँ, अब ये जो है, जो मूवी है, जिस जॉनर की है, वो बेसिकली जो यंगस्टर्स हैं उनको बहुत ही ज्यादा पसंद है। एंड दैट इज द रीजन कि जो इसकी नॉवल की जो फैन फॉलोइंग थी वो बहुत ही ज्यादा थी, और इसको जब अनाउंस किया गया था तो पीपल वर लाइक कि ओके, कब आएगी मूवी। सो लव हाइपोथेसिस जो है वो आ गई है। ऑफकोर्स यू कैन वॉच इट विद योर किड्स, यू कैन वॉच इट विद योर फैमिली, It's a romantic movie and you can only watch it with your partner or alone. जी हाँ, that's it, that's it. But Love Hypothesis जो है वो सच में गजब की movie है. Trailer मैं देख चुका है, मैंने novel पढ़ी है, that's why I can tell you. And the thing that कि मैं अब इसे जल्दी देखने वाली हूँ और आपको इसके लिए थिएटर में नहीं जाना पड़ेगा. Amazon Prime पे ड्रॉप कर दी गई है. आप पहले ट्रेलर देखिएगा और फिर खुद डिसाइड कीजिएगा कि क्या आप इस मूवी को देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं. यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए

जी हाँ दोस्तों, ऐसे के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM और यहाँ पर अब खबरों की बात कर ली जाए। जी हाँ, खबरों की दुनिया की तरफ रुख करने का वक्त हो गया है। बहुत कुछ चल रहा है दुनिया में, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने ही देश ऑस्ट्रेलिया से। जी हाँ, सो AI एजेंट ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार के पोर्टल में लगाई सेंध। जी हाँ, सो प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीसी ने क्या कहा, इसके बारे में जरा जानते हैं। जी हाँ, सो प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीसी ने कहा है कि ओपन AI के एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार की एक वेबसाइट में घुसपैठ की। जी हाँ, एजेंट ने ऑस्ट्रेलिया की सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा योजना मेडिकेयर से जुड़े गैर संवेदनशील डाटा वाले एक स्टेटिस्टिक्स पोर्टल को हैक किया। एल्बनीसी के मुताबिक ये सेंध जून में लगी थी, लेकिन ओपन AI को इसकी जानकारी अगस्त में हुई और उसने 10 सितंबर तक सरकार को इसकी सूचना नहीं दी। ओपन AI का कहना है कि ऐसा नहीं माना जा रहा कि किसी मरीज के रिकॉर्ड तक पहुंच बनाई गई थी। एल्बनीसी ने कहा कि उन्होंने इस घटना को लेकर ओपन AI के CEO सैम ऑल्टमैन के साथ बेहद स्पष्ट बातचीत की है, और वहीं ऑस्ट्रेलिया की साइबर सुरक्षा एजेंसी इस सेंध की जांच कर रही है। एल्बनीसी ने इसे अस्वीकार्य बताया। उन्होंने कह दिया है कि ये जो भी हुआ है ये नहीं चलेगा और इसे बिल्कुल भी नहीं होना। जी हाँ, और अगर ऐसा ही होता रहा तो AI पे आगे रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो सामने आ सकते हैं हमारी सरकार के द्वारा। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शांडिला थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शांडिला। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
5: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630543836305438।

0: या मोबाइल 0415952660 0415952660।
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। और दोस्तों इसी के साथ अमेरिका की तरफ से एक और स्टेटमेंट आई है, लेकिन सबसे पहले USS अब्राहम लिंकन के 8 नाविकों ने सुसाइड की कोशिश की थी, ये कहना है पेंटागन का। जी हाँ, क्या है माजरा? अमेरिकी विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन और उसके स्ट्राइक ग्रुप के कम से कम 8 नाविकों ने आत्म बात की पुष्टि बीबीसी के अमेरिकी सहयोगी CBS को मिले अमेरिकी नौसेना के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी होंग काओ के पत्र से हुई है। CNN ने सबसे पहले इस चिट्ठी की खबर दी थी। इस युद्धपोत को लगभग 10 महीने पहले मध्य पूर्व में तैनात किया गया था और वो रिकॉर्ड समय तक तैनाती में रहा। CBS न्यूज ने इस मामले पर टिप्पणी के लिए अमेरिकी नौसेना के संपर्क किया था, लेकिन जहाज और उसके चालक दल के लगभग 5,000 सदस्यों की तैनाती उस समय जांच के दायरे में आ गई जब पिछले महीने नाविकों के परिजनों और कांग्रेस के कई सदस्यों ने युद्ध पोत पर रहने की स्थिति और उसके कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में चिंता जाहिर की थी। वहीं ईरान अमेरिका जंग शुरू होने के बाद लिंकन और उसके स्ट्राइक मध्य पूर्व में तैनात किया गया था। ये युद्धपोत अब उस इलाके से निकल चुका है और सैन डियागो स्थित अपने अड्डे पर लौट रहा है। विमानवाहक पोत के स्ट्राइक ग्रुप में विमानवाहक पोत एकाएक एयरफोर्स विंग स्ट्राइक ग्रुप हेडक्वार्टर विध्वंसक स्क्वाड्रन एस्कॉर्ट विध्वंसक और विमान वाहक पोत पर तैनाती सभी विमानन स्क्वाड्रन शामिल है। जी हाँ, ये चिट्ठी न्यूयॉर्क की डेमोक्रेटिक सेनेटर क्रिस्टन गेलिब्रैंड के जहाज पर मौजूद स्थितियों के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में भेजी गई थी। तो अमेरिका कितना भी कहे कि वो बहुत अच्छे से चीजों को रखता है, लेकिन यहाँ पर सच्चाई कुछ और है ये देखा जा सकता है। जी हाँ, एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ हम बात कर लेते हैं यूएस और चाइना की। जी हाँ, सो बहुत बड़ा कुछ हो रहा है यूएस में, जहां पे चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पहुंचे हैं अपनी पूरे के पूरे डेलीगेशन और अपनी वाइफ के साथ। एंड गेस फॉर मिस्टर ट्रंप ने लिटरली उनके लिए रेड कार्पेट बिछा दिया। रेड कार्पेट, जी हाँ, रेड कार्पेट बिछा दिया गया उनके लिए। और वहां पर शी जिनपिंग जो है वो उतरते हैं जहाज से, बहुत ही अच्छे से वार्मली जो है वो दोनों मिलते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत गलत बोलते हैं। मतलब पॉलिटिक्स से ज्यादा गंदा धंधा इस दुनिया में कोई नहीं है, ये तो पक्की पक्की बात है। मतलब आप खुद सोचिए कि ऐसे एक दूसरे की बुराई करनी है, ऐसे कहना है कि हम तुम पे सैंक्शंस लगाएंगे, तुम हम पे सैंक्शन लगाओगे, और फिर ऐसे बोलना है कि ओ हाउ आर यू डूइंग, ये वो ब्ला ब्ला। आई मीन हाउ, कैसे कैसे कर लेते हैं लोग। आई मीन एक बात तो पक्की है, आई कैन नेवर बी अ पॉलिटिशियन, आई कांट बी अ पॉलिटिशियन बिकॉज आई कांट डू दैट। मतलब एक पीछे कुछ और, आगे कुछ और। पर एक चीज बहुत ही फनी थी कि जब ये सब कुछ चल रहा था तो उसी में B-1 बॉम्बर जो है वो ऊपर से निकलता है, रेड कार्पेट बिछाया हुआ है, गजब का स्वागत जो है उन्होंने चाइनीज प्रेसिडेंट का किया और उनकी वाइफ का किया, और वहां पर B-1 बॉम्बर ऊपर से जाता हुआ। लेकिन चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जरा भी नहीं उन्होंने अपनी आंखों को झपका। ही वाज लाइक यू नो व्हाट, प्लीज डोंट, यू नो, जस्ट डोंट डू इट, डोंट बॉदर मिस्टर ट्रंप। लाइक ये हमारे पास बहुत कुछ है। आपको एक चीज मैं बता दूं, वहां के एक फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि ये जो चीज है कि लोगों को जो लगता है कि वो हमारे साथ कुछ भी करेंगे तो चल जाएगा, या लोगों को लगता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, तो उन्होंने दो चीजें कही थी। उन्होंने कहा था कि चाइना जो है वो कभी भी पहला वार नहीं करेगा, मतलब वो पहली मिसाइल कभी भी नहीं दागेगा, लेकिन हाँ वो दूसरी मिसाइल दागने लायक सामने वाली कंट्री को नहीं छोड़ेगा। ये उन्होंने कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमने हाइड्रोजन बॉम्ब तक बना लिया है जो कि किसी भी और कंट्री ने नहीं बनाया। सो गेस व्हाट, हु इज The strongest. So yeah, हम छेड़खानी नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप छेड़खानी करोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। That's what they said. And यहाँ पर वही हुआ। मतलब आप ये सारा फैनफेयर जो है वो किसको दिखाने की कोशिश कर रहे हो, B-2 बॉम्बर एंड ऑल दैट। इससे पहले उन्होंने B-1 बॉम्बर और B-2 बॉम्बर तब निकाले थे जब पुतिन के साथ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पहुंचे थे अलास्का मीटिंग करने के लिए, और वहां पर पुतिन जो है वो भी आंखें नहीं झपकाते हुए नजर आए। ही वॉज लाइक ओके, बीन देयर डन दैट, व्हाट आर यू डूइंग मिस्टर ट्रंप। लेकिन मिस्टर ट्रंप को ना आदत है, यू नो व्हाट, आई हैव टॉयज। वो बच्चा होता है ना कि मेरे पास खिलौने हैं, मेरे पास खिलौने हैं, क्या मैं तुम्हें दिखाऊं, या दैट्स व्हाट ही डिड। और इसके अलावा और क्या क्या होगा, वेल अभी तो वो पता चलेगा, क्योंकि अभी ही कुछ वक्त पहले वो वहां पर पहुंचे हैं। फैनफेयर बहुत बड़ा है, रेड कार्पेट बिछ चुका है, B-1 बॉम्बर निकल के आ चुका है, लेकिन क्या टैरिफ वॉर आगे बढ़ेगी, क्या सैंक्शंस जो हैं वो आगे लगेंगी। लेकिन चाइना के पास इसका सॉल्यूशन है, एंड दैट इज रेयर अर्थ मेटल्स। मतलब वो लिटरली उनके गले को पकड़ के बैठा है, वो यूएस के गले को पकड़ के बैठा है कि तुमको कुछ भी सैंक्शन लगाना है तुम लगाओ, मैं सब कुछ करूंगा, मैं रशिया से ऑयल खरीदूंगा, मैं ईरान से ऑयल खरीदूंगा, तुम क्या ही कर लोगे। अगर तुमने ज्यादा बोला तो मैं तुम्हें रेयर अर्थ मेटल्स नहीं दूंगा। तुमको ऐसा लगता है, तुमको यही चाहिए क्या? एंड देन अमेरिका इज लाइक नो नो नो, वी आर नॉट गोना डू एनीथिंग। हम सब धमकी देने के लिए ही बैठे हुए हैं यहाँ पे, तुमको जो करना है तुम करो पीछे से, हाँ हम तुमको कुछ नहीं बोल। दैट भोंकता रहता है, वैसे ही है, अंदर कुछ नहीं है। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से। dang dang dang dang

जी हाँ दोस्तों, उसी के साथ यहाँ पर अब जरा एक बहुत ही खूबसूरत गाना प्ले करने का वक्त हो गया है और ये गाना है एक फरमाइशी गीत। जी हाँ, फरमाइशी गीत है, ये आया है हमारे बहुत ही खास लिसनर जस्सी जी की तरफ से। गाने का नाम है गंगा मेरी माँ का नाम। जी हाँ, रफी साहब का गाया हुआ, शमी कपूर साहब की मूवी का ये गाना। थैंक यू सो मच जस्सी जी, हमेशा की तरह जबरदस्त फरमाइशें करने के लिए और हमें उन पुरानी गलियों में लेकर जाने के लिए। लिटरली थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए। और ये रहा आपका ये खूबसूरत सा गाना।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
3: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
4: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
5: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
4: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
5: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
4: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
5: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
6: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर, याद रहे 04006644355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
7: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
8: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
9: आप सुन रही है रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों वहां पर मार्केट में बहुत कुछ चल रहा है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द शेयर मार्केट, ऑफ कोर्स शेयर मार्केट में भी बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्केट ज्वेलरी मार्केट। जी हाँ, अगर आप लोगों को डायमंड्स बहुत ज्यादा पसंद है तो मैं आपको बता दूं कि आपके डायमंड्स की वैल्यू अब गिर रही है। जी हाँ, आप लोग बोलोगे हैं हमारे डायमंड्स की वैल्यू गिर रही है, ये क्या कह रही हो निया तुम? वेल, जी हाँ, आपने सही सुना, 40% तक जो है वो नेचुरल डायमंड्स, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लैब ग्रोन डायमंड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द नेचुरल डायमंड्स। जी हाँ, जो रियल, जो नेचुरली जो डायमंड्स आपको मिलते हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। 40% है वो नेचुरल। इसका मतलब ये है कि डायमंड्स की वैल्यू अगर गिर रही है तो डायमंड ज्वेलरी जो है वो सस्ती होने वाली है और मुझे वो खरीद लेनी चाहिए जाके। वेल दैट इज द द लूप होल। जी हाँ, यहाँ पर डायमंड सस्ते हो रहे हैं, नेचुरल डायमंड, लेकिन डायमंड ज्वेलरी सस्ती नहीं हो रही है। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि डायमंड्स जो है वो सस्ते हो क्यों रहे हैं और डायमंड्स की वैल्यू जो है वो गिर क्यों रही है, खासकर नेचुरल डायमंड्स की। वेल, द रीजन नंबर वन इज ऑफकोर्स द मेन एंड द फर्स्ट रीजन इज लैब ग्रोन डायमंड्स। जी हाँ, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। लैब ग्रोन डायमंड्स जो हैं, ऐसा कहा जाता है कि वो उतनी ही शाइन देते हैं, अगर आप उन्हें लेकर जाओगे तो वो वैसे ही दिखते हैं, उनकी ऑथेंटिकेशन में वो वैसे ही डायमंड जो है वो नजर आने वाले हैं जैसे कि उसके सर्टिफिकेट में लिखा गया है। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन natural diamond and lab grown diamond. The only difference is exclusivity. जो यहाँ जो natural diamond होते हैं उनको बनने में सालों लग जाते हैं और उसके बाद जो है उनको तराशा जाता है, फिर उनको लाया जाता है। So of course the process is what makes it important, great, खास। लेकिन अगर बात की जाए चमक की या फिर कुछ ऐसी चीजों की, बाकी चीजों की, जिसमें आप लैब ग्रोन डायमंड या नेचुरल डायमंड के बीच में डिफरेंस बता सको, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। नाउ इसी की वजह से नेचुरल डायमंड्स की जो वैल्यू है वो गिरती हुई जा रही है। अब नेचुरल डायमंड जो है वो स्टोरी के साथ आते थे कि ओके ये इस खान से इसे लाया गया और उसके बाद इसे तराशा गया एंड द स्टोरी वॉज द प्राइजी। बट क्योंकि अब लैब ग्रोन डायमंड्स जो हैं वो किसी स्टोरी के साथ नहीं आते हैं, तो वो सस्ते होते हैं, उनको बनाना जो है वो इजी है और लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ता कि ओके कोई डायमंड जो है वो सालों साल बनेगा उसके बाद जो है वो मेरे पास आएगा, ऐसा नहीं होता है। सो नेचुरल डायमंड जो है वो इसीलिए उनको सस्ता बना रहे हैं, नेचुरल लैब ग्रोन डायमंड्स जो है इसीलिए नेचुरल डायमंड्स को सस्ता बना रहे हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ठीक है, नेचुरल डायमंड्स जो है वो सस्ते हो रहे हैं, 40% जो है वो सस्ते हो गए एज कम्पेयर टू द पास्ट प्राइस, तो मतलब ये तो अच्छा टाइम है नेचुरल डायमंड की ज्वेलरी लेने का। वेल दैट इज क्योंकि नेचुरल डायमंड की वैल्यू गिर गई है, लेकिन ज्वेलरी जो है वो अगर आप लेने जाओगे तो अभी भी महंगी ही है। जी हाँ, ऑल्दो आप उसे रीसेल करना चाहोगे तो उसकी कितनी वैल्यू पड़ेगी, दैट इज अ डिफरेंट केस ऑल टूगेदर। बट द थिंग इज कि यहाँ पर ज्वेलर जो है वो ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, अगर नेचुरल डायमंड सस्ता हो भी गया तो भी हम आपको सस्ती ज्वेलरी नहीं दे पाएंगे। उसके पीछे रीजन ये है कि हमें बहुत सारी चीजें करनी होती है, जैसे कि उस डायमंड को होल्ड करने के लिए जो मेटल होता है वो तो महंगा हो रहा है ना, तो उसकी वजह से आपका जो डायमंड, नेचुरल डायमंड की जो ज्वेलरी है वो प्राइजी ही रहेगी। जी हाँ, उसके बाद वो कहते हैं कि सर्टिफिकेशन, बहुत सारी चीजें होती है जो इस प्रोसेस में जाती है जिसकी वजह से आपकी ज्वेलरी सस्ती नहीं हो रही है। बेशक आपके नेचुरल डायमंड की वैल्यू जो है वो गिर रही है, पर ज्वेलरी सस्ती नहीं हो रही है और हम तो इतने में ही बेचेंगे। नाउ comes the question, क्या आपको natural diamond jewelry अभी लेनी चाहिए? Well, I think this is the worst time to buy a natural diamond jewelry. And अगर आप कोई बहुत ही हेफ्टी सा बड़ा सा हीरा ले रहे हैं, then only it makes sense. Otherwise, इस वक्त जो है वो बिल्कुल भी अच्छा टाइम नहीं है, क्योंकि इसकी रीसेल वैल्यू जो है वो उतनी है ही नहीं। वेल, डायमंड्स की वैल्यू जो है वो रीसेल वैल्यू में इतनी आती ही नहीं थी, लेकिन अब जो है क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड्स आ गए हैं मार्केट में, तो उनकी वैल्यू जो है उतनी भी नहीं बची है। तो ऐसे में आपको नेचुरल डायमंड्स की तरफ अभी नहीं जाना चाहिए, अनटिल अनलेस, मतलब ऑफ कोर्स इट्स योर चॉइस एट द एंड ऑफ द डे, बट अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई ऐसा मेटल हो, कोई ऐसी ज्वेलरी हो जिसकी रीसेल वैल्यू अच्छी हो, देन दिस इज नॉट द परफेक्ट टाइम टू बाय नेचुरल डायमंड ज्वेलरी। जी हाँ, ऑफकोर्स वो आपको सस्ता नहीं देंगे, वो महंगा ही देने वाले हैं और आपको कोई ना कोई स्टोरी जो है इसके पीछे भी बताई जाएगी, बट दैट डजंट मीन कि आपके नेचुरल डायमंड का प्राइस गिर नहीं रहा है। और अभी तक 40% गिर चुका है, इसके आगे कितना गिरने वाला है वो हम कुछ भी नहीं कह सकते। हाँ, आप लोग बोलोगे बात तो सही है, सोना महंगा हो रहा है, हीरे सस्ते हो रहे हैं, किस तरफ जाया जाए? वेल, आई डोंट थिंक आई हैव टू से एनीथिंग। सोना खरीदना जो है इज नॉट अ गुड थिंग फॉर एनी इकोनॉमी ज्यादा, बट द थिंग इज कि सोने की वैल्यू जो है वो हमेशा से बढ़ती रही है एज कम्पेयर टू डायमंड्स एंड एनी अदर स्टोन। सो या आई थिंक इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, गोल्ड इज ऑलवेज अ बेस्ट इन्वेस्टमेंट। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

इसी के साथ लेट मी टेल यू अ स्टोरी. जी हाँ, ये स्टोरी जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और क्योंकि हम डायमंड्स के बारे में बात कर रहे थे तो मुझे लगा कि मुझे आपको ये स्टोरी भी सुनानी चाहिए. जी हाँ, तो ये स्टोरी शुरू होती है ब्रिटिशर्स के साथ. जी हाँ, ब्रिटिशर्स आते हैं और

सो डायमंड अगर आप देखा जाए तो कोई रेयर स्टोन नहीं है. इस दुनिया में बहुत सारी डायमंड माइंस हैं और बहुत सारे डायमंड्स जो हैं वो निकल कर आते हैं, लेकिन फिर भी इसको इतना ज्यादा प्राइजी जो है वो बताया जाता है. व्हाई? क्योंकि इसको मार्केट ही ऐसे किया गया. इसको कहा गया कि ओ ये बहुत ज्यादा खास है, ये ऐसा होता है वैसा होता है, कितना खूबसूरत है, कितना चमकीला है. जी हाँ, अगर आप डायमंड्स की बात करें तो डायमंड्स जो है वो सबसे कम खास स्टोन है इस पूरी दुनिया में. जी हाँ, अगर इस अर्थ की बात करें तो डायमंड जो है वो सबसे कम रेयर स्टोन है. जी हाँ, इसके अलावा आप दूसरे डायमंड्स को दूसरे स्टोन्स को फिर भी कह सकते हो, लाइक रूबीज जो है वो फिर भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, सैफायर्स जो है, बाकी सारी जो चीजें हैं वो फिर भी ज्यादा जो है वो खास हो सकती हैं, एक्सेप्ट डायमंड्स. लेकिन फिर भी डायमंड्स को इतना ओवररेटेड रखा गया. और आपको ये भी बता दूं कि सबसे पहला डायमंड जो है वो कहाँ मिला था. जी हाँ, सो बेसिकली डायमंड्स की शुरुआत ही इंडिया से हुई थी. मैं आपको कह रही हूँ ना कि इंडिया जो है वो हमेशा से एक ऐसी जगह रही है जहां से बहुत सारी चीजें निकल कर आई है. मतलब हमने इन लोगों को, वेस्टर्न पीपल को या फिर दुनिया वालों को बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ बताया है. एंड डायमंड इटसेल्फ वाज फर्स्ट फाउंड इन इंडिया. जी हाँ, एंड इट वाज बैक इन 4th century BCE. जी हाँ, ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो है और वो एस्टिमेट ये भी करते हैं कि इसकी ट्रेडिंग जो है वो शायद इससे पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन फिर भी इन्हें इतना खास नहीं माना जाता था. ऑफकोर्स यहाँ से लेजेंडरी डायमंड्स भी निकले हैं और उनमें होप डायमंड और कोहिनूर जो है वो उनमें से एक है. ऑफकोर्स कोहिनूर हमारे पास नहीं है, वो किसी और के पास है, किसी और के ताज पर है. बट द थिंग इज कि यहाँ पर डायमंड्स को खास बनाया गया. नाउ दैट इज हाउ कंज्यूमरिज्म एंड मार्केटिंग वर्क्स. जी हाँ, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको जो है वो अंग्रेजों ने सिखाया है, यानी कि ब्रिटिशर्स ने सिखाया है कि अगर वो किसी चीज से पैसा कमाना चाहते हैं जो कि नॉर्मल है, जो कि आपको कहीं आप चाहते हो कि लोगों को लगे वो खास है, मतलब एक नॉर्मल चीज जो आप खास बनाना चाहते हो आप उसे बना सकते हो. आपको उसको स्टोरी ऐसे उसकी बनानी पड़ेगी, आप उसको मार्केट जो है ऐसे करोगे कि ओ माय गॉड कितनी ज्यादा खास है. लोगों को लगेगा ओ वो तो किसी स्टोरी का पार्ट बन रहे हैं, वो तो किसी खास चीज को अपनी तिजोरी में रख रहे हैं, अपने गले पे सजा रहे हैं. एंड दैट्स हाउ दे डिड इट. जी हाँ, एंड ऐसे ही डायमंड्स को खास बनाया गया जो कि लिटरली खास नहीं थे. अगेन कोई भी और स्टोन जो है वो डायमंड से ज्यादा खास है, लेकिन डायमंड नहीं है. जस्ट दैट इनको मार्केट ऐसे किया गया कि बहुत ज्यादा खास है और आपसे इतने ज्यादा पैसे लूटे गए. नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आपने जो डायमंड ज्वेलरी ले ली है वो आपको ऐसा फेंक देनी चाहिए, कुछ ऐसा कर देना चाहिए. नो, इट्स नॉट दैट. आपने उसके लिए पैसे खर्च किए हैं और उसको मार्केट ऐसे किया गया, लेकिन उसकी वैल्यू भी वैसी ही आपको मिल सकती है. क्योंकि मार्केटिंग का जो फायदा है वो सिर्फ उनको नहीं मिलेगा जो आपको बेच चुके हैं, बल्कि अगर आप आगे किसी को बेचना चाहते हैं तो आपको भी मिलेगा. बट आप सोचिए कि कैसे माइंड गेम्स जो हैं वो खेलते हैं. कहते हैं ना कि इंसानों को मैट्रिक्स में फंसाया गया है, कंज्यूमरिज्म में, मार्केटिंग में, ये सारी चीजों में फंसाया गया और उनको कहा गया कि यू नो व्हाट, आपको 9 to 5 करना है, आपको सब कुछ करना है. वाई? बिकॉज यू वॉन्ट टू लिव अ सर्टन लाइफ. यू नीड टू लिव अ सर्टन लाइफ. देर आर सम लग्जरीज दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर लाइफ. और अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो सच में वो जरूरी है भी नहीं. एंड डायमंड इज बींग वन ऑफ दोज थिंग्स. जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल सीईसी अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ. दोस्तों अब वक्त हो गया है हमारे फेवरेट सेगमेंट ओल्ड इज गोल्ड का, तो आ जाइए, सवार हो जाइए हमारे साथ इस सफर में, बिकॉज हम आपके लिए अब पूरी तरह से प्ले करने वाले हैं पुराने गाने, सुनाने वाले हैं पुराने किस्से. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अगर आपकी कोई फरमाइश है जो पुराने गानों से रिलेटेड है तो वो भी हमें भेज दीजिए. इसी के साथ सबसे पहले हम आपको सुनाने वाले एक गाना जो कि बहुत ही खूबसूरत है. गाने का नाम है जे हम तुम चोरी से, आप सबके लिए.

तो पक्की है, आपको बहुत ही दिलचस्प लगते हैं। एक्टिंग की बात हो तो देवानंद साहब और शमी कपूर साहब का कोई एक्टिंग करने की कोशिश ही नहीं करते थे, उन्होंने अपना एक सिग्नेचर स्टाइल जो है वो बना लिया था। अब ये किस्सा है धर्मेंद्र का और शमी कपूर साहब का, क्योंकि शमी कपूर साहब ना सिर्फ पर्दे पे आपको बहुत ही दिलचस्प एक्टिंग करते हुए नजर आते थे, बल्कि वो रियल में भी बहुत ज्यादा दिलचस्प थे। धर्मेंद्र बताते हैं कि वो नूतन के साथ, जी हाँ, अभिनेत्री नूतन के साथ कश्मीर मिलना होता है शमी कपूर साहब से, और शमी कपूर साहब उनसे मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि धर्मेंद्र तुमने नाश्ता किया है या नहीं। जी हाँ, धर्मेंद्र बताते हैं, जी शमी साहब मैंने तुम नाश्ता कर लो। अब धर्मेंद्र को समझ नहीं आ रहा था कि मैंने तो नाश्ता कर लिया, सबसे पहली बात है कि मैं दूसरी बार नाश्ता करूं कैसे, और ऐसा क्या खिलाने वाले हैं शमी कपूर साहब जो इतना इंसिस्ट कर रहे हैं। धर्मेंद्र ने कहा कि चलिए ठीक है, मैं कर लूंगा। शमी कपूर साहब जाते हैं, एक ग्लास लेते हैं, उसमें दो अंडों को तोड़ते हैं और उसमें ब्रैंडी मिलाते हैं और साथ में उसको मिक्स करके धर्मेंद्र के पास ले आते हैं। धर्मेंद्र ये देख कहते हैं कि ओह, मुझे नहीं पता था शमी साहब आप ऐसे वाले नाश्ते की बात कर रहे हो, बट या इट वाज अ इंटरेस्टिंग आइडिया। जी हाँ, क्योंकि वो कश्मीर में जा रहे थे, शूटिंग के लिए जा रहे थे, वहां ठंड थी, तो ऐसे में शमी कपूर साहब ने सोचा कि एक नाश्ता तो ठीक है लेकिन दूसरा नाश्ता भी जरूरी है, दो अंडों में ब्रेंडी डालना, ये तो सबसे पहले तो मैंने ये कॉम्बिनेशन पहली बार सुना। और उसके बाद जो है धर्मेंद्र जो है वो उसे पीते हैं, वो कहते हैं कि मैंने बहुत सारे लोगों की खातिरदारी देखी है पर जो शमी कपूर साहब के आइडियाज होते थे ना वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होते थे, मतलब आप सोच भी नहीं सकते थे कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है और वो अगले ही पल क्या करने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ पर एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

पिक्चर में आपको हेमा मालिनी दिखी, इस पिक्चर में आपको धर्मेंद्र दिखे, और इस पिक्चर में आपको विलन के कैरेक्टर में दिखे विनोद खन्ना। जी हाँ, अब विनोद खन्ना कितने हैंडसम रहे हैं इसके बारे में मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस वक्त की एक्ट्रेसेस ये कहती थी कि विनोद खन्ना से ज्यादा हैंडसम एक्टर उन्होंने देखा ही नहीं था। जी हाँ, और ये वो वाला वक्त था जब विनोद खन्ना जो है एज अ हीरो काफी अच्छे से काम जो है वो कर रहे थे, उनकी पिक्चर्स जो है वो आ रही थी, और उनके पास कोई भी ज्यादा वजह नहीं थी, कोई भी वजह नहीं थी जिसकी वजह से उन्हें विलन कैरेक्टर में जो है वो आना पड़ता। काम करने वाले थे और धर्मेंद्र को एक विलन के कैरेक्टर के लिए जबरदस्ता इंसान चाहिए था, जी हाँ, जबरदस्ता एक्टर चाहिए था, और उन्हें ख्याल आता है विनोद खन्ना का, क्योंकि इससे पहले भी वो एक मूवी में धर्मेंद्र के साथ विलन का कैरेक्टर जो है वो प्ले कर चुके थे। लेकिन अगेन टाइमिंग जो है वो डिफरेंट थी, 1974 तक विनोद खन्ना जो है वो काफी एस्टेब्लिश्ड एक्टर बन चुके थे एज अ हीरो, सो ऐसे में विलन कैरेक्टर प्ले करना फिर से जो है वो एक बेवकूफी वाली बात होती। विलन का कैरेक्टर करोगे? अब उनकी दोस्ती इतनी ज्यादा गहरी थी कि विनोद खन्ना ने कहा कि हाँ मैं करूंगा और तुम्हारे लिए करूंगा। हुआ, पत्थर और पायल आई और उसमें उनके किरदार को बहुत सराहा गया। ऑफ कोर्स उसमें वो विलन कैरेक्टर में थे, लेकिन फिर लोगों को उनकी एक्टिंग बहुत ज्यादा पसंद आई और गुड लुकिंग तो वो थे ही। अब ये दोस्ती जो है वो बहुत ही ज्यादा गहरी थी, लेकिन एक वक्त आया जब इस दोस्ती में दरार आ गई थी। एंड कैन यू इमेजिन वो दोस्ती में दरार किसकी वजह से आई थी? जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि विनोद खन्ना और अमृता सिंह की नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी उस वक्त, और धर्मेंद्र के घर में कोई पार्टी थी और उस पार्टी में जब विनोद खन्ना को उन्होंने बुलाया और वो नहीं आ पाए, और उन्हें पता चला कि वो आ क्यों नहीं पाए और कोई वजह थी जो कि अमृता सिंह की वजह से वो उस पार्टी में नहीं आ पाए, तो धर्मेंद्र ने गुस्से में आके विनोद खन्ना से कह दिया और अमृता सिंह का भी जिक्र उन्होंने कर दिया, और उसकी वजह से विनोद खन्ना को वहां पर गुस्सा आ गया। वहां पर हाथापाई तक जो है वो नौबत आ गई। मतलब आप गेस कीजिए, इमेजिन कीजिए कि एक ऐसी दोस्ती जहां पर एक एक्टर विलन बनने के लिए तैयार हो गया उस दोस्ती की वजह से, जहां पर वो ऑलरेडी अच्छे हीरो कैरेक्टर्स प्ले कर रहा था, लेकिन दरार आई तो आई किस वजह से? ये देखकर कि उन्होंने, धर्मेंद्र ने विनोद खन्ना को धक्का दे दिया, उन्होंने भी धर्मेंद्र की कॉलर पकड़ ली, और फिर उसके बाद काफी वक्त तक दोनों ने ना एक दूसरे के साथ काम किया ना एक दूसरे से मिले, लेकिन फिर बाद में फिर से दोनों की दोस्ती जो है वो हो गई। इसे कहते हैं कि अगर आपकी दोस्ती जो है ना वो बहुत गहरी, अगर थोड़ी सी नोकझोंक हो भी जाए तो भी वो दोस्ती जो है वो वापस हो सकती है। एंड इमेजिन कीजिए, मतलब कोई भी एक्टर जो कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हीरो है वो विलन कैरेक्टर प्ले नहीं करता। मतलब आज का जमाना डिफरेंट है, लेकिन उस वक्त तो कोई ऐसा पंगा नहीं लेता, लेकिन यहाँ पर देखिए एक दोस्ती की वजह से विनोद खन्ना ने पत्थर और पायल में विलन का कैरेक्टर प्ले किया था, ऑल बिकॉज ऑफ धर्मेंद्र। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

और उसी के साथ अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। जी हाँ, जा रहे हैं हम, वापस आएंगे कल। और कल क्या है, क्या है कल? जी हाँ, वही है जो आप सोच रहे हैं, वही है जिसका इंतजार हमें हमेशा रहता है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट फ्राइडे। तो फ्राइडे है कल। आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा फ्राइडे जल्दी ही आ गया? आप लोग बोलोगे नहीं नहीं निविया, हमको बिल्कुल नहीं लग रहा, हमको ऐसा लग रहा है कि फ्राइडे बहुत दिनों बाद आ रहा है। तुम ऐसे मत बोलो प्लीज, हमने बहुत काम किया है और अब हमें रेस्ट करने की जरूरत है, रिजुविनेट होने की जरूरत है। और तुम ऐसे मत बोलो कि हमने कुछ नहीं किया और ऐसे जल्दी से ही आ गया। हमने मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे को सर्वाइव किया, उसके बाद हमें फ्राइडे मिलने वाला है। सो ऐसे मत कहो, ठीक है? हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए एंड सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए मेरी तरफ से नहीं बल्कि बहुत ही खूबसूरत रिकमेंडेशन है हमारे बॉस मिस्टर जतिश पूरन जी की तरफ से। जी हाँ सर, आपने बहुत ही खूबसूरत गाना जो है आपने भेजा है, रेकमेंड किया सबसे पहले, तो ये गाना बेस्ट है हमारे आज के प्रोग्राम को एंड करने के लिए। गाने का नाम है खोया खोया चांद खुला आसमान, और वही आप कर रहे हो। जी हाँ, सो डेफिनेटली वेरी वेरी वेरी गुड सॉन्ग, और थैंक यू सो मच इट्स रिकमेंडेशन के लिए। और मैं बाकी के सारे लिसनर्स आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद ये प्यार देने के लिए। जी हाँ, ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए खोया खोया चांद। बाय बाय, सी यू, टाटा।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: सियाराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी सीडीज.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में. सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ. डिमेंशिया एक्शन वीक में विशेष पहल. जी हां, ब्रिस्बेन के स्टेट लाइब्रेरी में डिमेंशिया एक्शन वीक के तहत एक विशेष पॉप अप इवेंट आयोजित किया गया है. इसका मकसद डिमेंशिया की बीमारी को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाना और इससे जुड़ी हिचकिचाहट को दूर करना है. वहीं ब्रिस्बेन शिप बिल्डर की बड़ी उपलब्धि. ब्रिस्बेन की एक स्थानीय जहाज निर्माता कंपनी ने अमेरिकी बाजार के लिए अपनी एक मल्टी मिलियन डॉलर जहाजों के बेड़े की पहली खेप रवाना की है, जो स्थानीय उद्योग के लिए एक बड़ी उपलब्धि है. इसके साथ क्वींसलैंड में अस्पताल संक्रमण रोकने के लिए नया ट्रायल. क्वींसलैंड के शोधकर्ता अस्पतालों में मरीजों को होने वाले संक्रमण की दर को कम करने के लिए एक नए तरह के मेडिकल स्प्रे का क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं. वहीं ब्रिस्बेन वाटर क्षेत्र में अवैध हथियारों की जब्ती. ब्रिस्बेन वाटर प्रोएक्टिव क्राइम टीम ने एक गुप्त सूचना पर छापेमारी करके भारी मात्रा में अवैध हथियार, गोलियां और नशीले पदार्थ जब्त किए हैं. इसके तहत स्कूल हॉलीडे के लिए 8.5 लाख यात्री तैयार. जी हां, आगामी स्कूल हॉलीडे की छुट्टियों को देखते हुए ब्रिस्बेन एयरपोर्ट और ऑस्ट्रेलियाई एयरलाइंस ने कमर कस ली है. अनुमान जताया जा रहा है कि इस बार 8.5 लाख के से अधिक लोग हवाई यात्रा करने वाले हैं. वहीं ऑस्ट्रेलिया और यूक्रेन का 10 वर्षीय सुरक्षा समझौता. ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन के साथ एक नए 10 वर्षीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने $60 मिलियन की नई सहायता राशि देने की भी घोषणा की है. इसके साथ अब जरा चलते हैं सीधा भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ. सबसे पहले आंध्र और उड़ीसा में भारी बारिश का अलर्ट. मौसम विभाग यानी कि IMD ने चेतावनी जारी की है कि बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव अब आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा तट की तरफ बढ़ रहा है. कई तटीय इलाकों में तेज हवाओं और भारी बारिश के चलते रेड अलर्ट जारी किया गया है. वहीं वंदे भारत ट्रेन का सफल ट्रायल. भारतीय रेलवे से एक और शानदार खबर है. नई वंदे भारत शेयर कार रेस ने 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपना हाई स्पीड ट्रायल पूरा कर लिया है. ये ट्रायल नागदा, कोटा और सवाई माधोपुर सेक्शन के बीच हुआ, जिससे भविष्य में ट्रेन का सफर और तेज होने वाला है. वहीं रविवार को भी खुले रहेंगे सरकारी बैंक. त्योहारों के मौसम को देखते हुए RBI ने एक बड़ा फैसला लिया है. आगामी रविवार यानी 27 सितंबर को देश के सभी पब्लिक सेक्टर बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पूरी तरह खुले रहेंगे. वहीं त्योहारों में हवाई किराए पर केंद्र का बयान. आगामी फेस्टिवल सीजन को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने साफ किया है कि इसका सरकार फ्लाइट टिकट के दामों में पर कैप नहीं लगाएगी. हालांकि एयरलाइंस को सलाह दी गई है कि वे जेट फ्यूल की बढ़ती कीमतों के बावजूद टिकटों के दाम जायज रखें. वहीं दिल्ली में युवाओं के लिए जामिया की नई शुरुआत. दिल्ली स्थित जामिया मालिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने ओपन और ऑनलाइन मोड के तहत 13 अलग अलग विषयों में एक साल के नए PG प्रोग्राम शुरू किए हैं. वहीं कोलकाता में 4000 करोड़ का बड़ा हॉस्पिटल प्रोजेक्ट. पश्चिम बंगाल के लिए एक बड़ी खबर है. अडानी ग्रुप ने कोलकाता के पास 2000 बेड का एक विशाल हॉस्पिटल बनाने का ऐलान किया है. वहीं अब जरा चलते हैं सीधा अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ. सबसे पहले यूएनजीए में फ्रांस के राष्ट्रपति का बयान। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने गाजा में शांति स्थापित होने के दावों को खारिज कर दिया है। वहीं शी जिनपिंग और अमेरिका चीन व्यापार संधि। जी हां, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिकी यात्रा पर है, जहां अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर में 2 महीने की ढील और बढ़ा दी गई है। राष्ट्रपति शी ने दोनों देशों से प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग बढ़ाने की अपील की है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई पोर्टल में एआई एजेंट की सेंधमारी। जी हां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीसी ने बताया कि एक एआई एजेंट ने ऑस्ट्रेलिया के सरकारी हेल्थ केयर डाटा पोर्टल में अनधिकृत पहुंच बना ली थी, जिसके बाद सुरक्षा समीक्षा के आदेश दिए गए हैं। वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर तनाव। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के 10 ठिकानों पर स्ट्राइक करने का दावा किया है। पाकिस्तान का कहना है कि यह कार्रवाई उसके सीमावर्ती इलाकों पर हुए ड्रोन हमलों के जवाब में की गई है। वहीं लग्जरी ऑटो ब्रांड बेंटले की पहली इलेक्ट्रिक कार। जी हां, लग्जरी गाड़ियों के शौकीनों के लिए खबर। कार कंपनी बेंटले ने अपनी पहली ऑल इलेक्ट्रॉनिक एसयूवी कार दुनिया के सामने पेश की है। कंपनी अब युवा खरीदारों को आकर्षित करने के लिए अपने पोर्टफोलियो को नया रूप दे रही है। वहीं ओमान तट के पास मालवाहक जहाज पर हमला। ओमान के तट और हॉर्मुज जल डमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक मालवाहक जहाज एमवी केप डाओ पर हमला हुआ है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि इस घटना में जहाज पर मौजूद 20 भारतीय नाविकों में से एक नाविक की जान चली गई है। इसके साथ अब जरा चलते हैं सीधा खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले एशियन गेम्स 2026, मीराबाई चानू का ऐतिहासिक मेडल। एशियन गेम 2026 में भारत की स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है। 28 सालों में एशियन गेम्स की वेटलिफ्टिंग में भारत का ये पहला सिल्वर मेडल है। वहीं एशियन गेम्स की बात करें तो भारतीय मेंस हॉकी टीम का जलवा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए दक्षिण कोरिया को 5-0 के बड़े अंतर से मात दे दी है। वहीं एशियन गेम्स स्कीट शूटिंग में ब्रॉन्ज। शूटिंग रेंज से भी भारत के लिए अच्छी खबर आई है। अनंतजीत सिंह नरूका और परिनाज धालीवाल की जोड़ी ने मिक्स्ड स्कीट शूटिंग इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत की झोली में ब्रॉन्ज मेडल डाला है। वहीं वुशु में रोशिबीना देवी का रजत पदक। जी हां, एशियन गेम्स में वुशु प्रतियोगिता के 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में भी भारत की रोशिबीना देवी ने कड़ी टक्कर देते हुए देश के लिए सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इसके साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे कल। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।
3: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।
2: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
3: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
2: ऐसा क्या खास है वहाँ?
3: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक, और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
2: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
3: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818, दैट्स 3804।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132268 उते कॉल करो। इह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असीं होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असीं रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तों इलावा होर वी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
1: ओए राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमीग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली to minimize it.
2: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट चैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, चैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierTickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
2: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
1: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड ओ

OMSORG वेबसाइट omsorg.co.in व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360 ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असीं 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असीं होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तों भी अग्गे दे समें वास्ते इक नवी खेड इमारत जिस विच इक नेशनल एक्वाटिक सेंटर एथलीट वीले शामिल हन जो के अगे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तों भी अग्गे दे समें वास्ते इक नवी खेड इमारत जिस विच इक नेशनल एक्वाटिक सेंटर एथलीट वीले शामिल हन जो के अगे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तों इलावा होर वी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजा नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
1: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। A place to call home, खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

हेलो वेलकम आदाब जी, सत श्रीकाल जी। हाँ तुम बने हुए हो जी थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बसौनी वन सर वो एम ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बन चुके हो। ढेर सारिया गल्लां करन दा साडा बहुत ही सोहना जिहा वेला शुरू हो चुके है जी, ते इन्हां गल्लां करनियां ने इस वेले दे दौरान असी ढेर सारियां थोड़े नाल थोड़ियां मेरिया अपनियां सब दियां। कुछ यादां तां असीं कर लवांगे, कुछ किसे दियां गल्लां कर लवांगे, कुछ गीत ज्यादा सुनांगे। फिलहाल थोड़ी पसंद है मेरी पसंद है सब दी पसंद है रले मिले नवे पुराने ते सब कुछ होगा। बस थोड़े सुनेहियां दा तां इंतजार है, तो फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। रेडियो बसौनी वन सर ओन एम साडे फेसबुक पेज है जी, bisoni@bisoni.com साडी ईमेल आई टी है जरिए जेड़ा भी तुहानू चंगा लगता है वो अपना उपर साडे नाल गल्लबात जरूर करो। फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। मैं हुण वापस आउंदी हां।

बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 101 एम ते जी आर जे संदेश अलग दिन से बने हुए हैं। देखो फिल्मा दे हिट या फ्लॉप होने का हिसाब रखते हो तुहानू इस नाल जुड़े कुछ टर्म्स अते इसका गणित जरूर पता होना है, जिवें ब्लॉकबस्टर अते ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर विच की फर्क हुंदा है, स्लीपर हिट की हुंदा है, नहीं पता तो चलो इसे ते चर्चा कर लेने। तो देखो जेकर तुहाडे दिमाग विच फिल्मी कीड़ा हैगा है तां बॉक्स ऑफिस दे नाल जुड़े सवाल परेशान करते होणगे, जिवें ब्लॉकबस्टर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर विच फर्क, फुटफॉल की हुंदा है, किवें तय हुंदा है कि फिल्म हिट है या एवरेज है, स्लीपर हिट की हुंदी है, वगैरह वगैरह वगैरह वगैरह। जेकर तुसीं भी अपना फिल्मी जी के अपडेट करना चाहते है क्यों तां हुण मैं तुहानूं इहो जिहे गल्लां दस्सण लगूंगी जानी हैगी है ना, जिन्हां नूं जाण के तुसीं कहोगे कि सच्ची इस तरह भी हुंदा। सच्ची हुंदा हुंदा दस्सदे उस बारे, पर पहलां तुसीं सुन लो एह गीत।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड्ड के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुशफायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो।

0: बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवाने वन सर वाले हम ते जी आरजे संदेश अलग दिनाल सी बने हुए। देखो सब तो पहला गल कर दें फिल्म दे बजट थी दा। देखो किसी मूवी का बजट उसके हिट या फ्लॉप होने के पैमाने का सब तो वड्डा फैक्टर हुंदा है। फिल्म की कैटेगरी तय करन तो पहला कुछ चीजा समझना जरूरी हुंदिया ने जिवें लैंडिंग कास्ट इस विच प्रोडक्शन दे खर्चे शामिल हुंदे ने जिवें एक्टर्स दी फीस क्रू सैट दे खर्च वगैरह वगैरह वगैरह। दूसरा प्रिंट ते विज्ञापन यानी एडवरटाइजमेंट्स ते इस विच ओ खर्च आउंदा है जो किसी मूवी दी मार्केटिंग ते प्रमोशन विच खर्च हुंदा हुंदा है। हुण इस तों बाद जानना तुसीं इह हैगा कि किवें तय हुंदा है हिट या फ्लॉप, इही दसदे आं पप्पी लैगी सुणो।
1: It's Black Lives Matter.

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks, Tanvire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

हाँ जी जी अनु जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो दुस्वाने वन सन ओवर एम ते जी आर चे संदेश अलग दिन आल से बने हुए हूँ। जी मैं तुम पहला दस्या सी ना कि किवें तो तय हुंदा है कि फिल्म हिट है कि है या फ्लॉप, यही तो जानना सब तो ज्यादा जरूरी है। तो डिजास्टर तो शुरुआत कर लिए चलो डिजास्टर तो करते हैं। तो देखो डिजास्टर फिल्म केड़ी हुंदी है, ता जिहड़ी फिल्म अपनी लागत का 50% भी नहीं कमा पाती ना, 50% भी हाफ भी कमाई नहीं कर पाती, यानी कि फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ दे विच बनी है 50 लाख भी ना कमाई कर सके तो वह डिजास्टर हुंदी है। फ्लॉप फिल्म अपने बजट तो घट कमाई करती है कि वह फ्लॉप हुंदी है। तो एवरेज फिल्म केड़ी हुंदी है, एवरेज हुंदी है फिल्म अपनी लागत कढ लैंदी है तो मामूली मुनाफा कमाती है, यानी कि 1 करोड़ दे विच बनी है तो 1.5 करोड़ या 1.25 करोड़ उसने कमाई कर ली है ना। हिट अपनी लागत तो घट 50% तो ज्यादा का मुनाफा, जिवें 1 करोड़ दे विच बनी है तो 1.5 करोड़ तो उपर दी जे कमाई कर ले तो वह हिट हुंदी है। तो सुपर हिट ये फिल्म अपनी लागत तो दुगनी कमाई करती है तो वह सुपर हिट हुंदी है। तो ब्लॉकबस्टर ब्लॉकबस्टर फिल्म फिल्म अपनी लागत तो 3 गुणा या उस तो भी ज्यादा की कमाई कर ले ब्लॉकबस्टर हो जाती है। तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म वो ये होंगी है, फिल्म पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दे तो लागत तो 4-5 गुणा की ज्यादा कमाई करे।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार।
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: मेरी एडवाइस है गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
2: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

हां जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101.1 FM ते जी आरजे संदेश चौलक दे नाल तुसीं बने होए हो। हां जी, तां देखो हुण असली कमाई दा सच जानदे आ तां लोक अक्सर लोग समझदे हैगे ने कि जेकर फिल्म ने 100 करोड़ कमाए हैगे ने ते बजट 80 करोड़ दा हैगा तां फिल्म हिट है। ये पूरी सच्चाई नहीं है। फिल्म की कुल कमाई का एक वड्डा हिस्सा टैक्स ते सिनेमा घर मालिकां दे कोल जांदा हैगा। निर्माता ते डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटर से हाथ विच जो पैसा आता है उसनू डिस्ट्रीब्यूटर शेयर करते हैं कि फिल्म तद हिट मनी जाती है जब डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर उसकी फिल्म खरीदने की कीमत तो ज्यादा होगी।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर. रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स. घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी. आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखें. रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स. तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा. रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर. आज ही कॉल करें 0430-525-896. दैट इज 0430-525-896. हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.
3: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.
4: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.
5: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.
6: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिस्वानी, दिस इज आलिया.
7: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.
8: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिस्वानी, दिस इज शाहरुख खान.
9: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.

जी वेलकम बैक, जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रुसवानी 101 एम ते जी आज के संदेश अलग दिनाल से बने हुए। इस तो बाद हुण आपां गल करदे आं नॉन थिएटरिकल कमाई की। अजकल फिल्मां रिलीज़ होने तो पहला ही पैसा कमा लैंदियां ने, एक प्रॉफिट राइट्स बेच के मिलता है जिवें सैटेलाइट राइट्स, इस जो चैनल से राइट्स लैंदे ने या वो मूवी दिखाते रहते हैं, डिजिटल राइट्स ओटीटी प्लेटफॉर्म्स मूवी बेची जाती है, म्यूजिकल राइट्स गाने तो कमाई होंगी है। फिर होंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट, देखो कई बार फिल्म ना बॉक्स ऑफिस से कमाई के मामले में एवरेज होंगी है, पर इन राइट्स की वजह ना प्रोड्यूसर्स मुनाफा कमा लेंगे ने, पर मूवी के हिट फ्लॉप या एवरेज होने का वर्डिक्ट बॉक्स ऑफिस कमाई के हिसाब न ही तय होंगे।

0: डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

हाँ जी तो वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 107.1 जी आर जे संदेश अलग दिनाल तुसीं बने होए हो। हुण देखो फुटबॉल क्यों हुंदा है, इस दे विच महत्वपूर्ण इस बारे भी गल कर लैंदे आ, इंपोर्टेंट क्यों हुंदा है। तां कमाई तो इलावा ना एक होर अहम पैमाना हुंदा है, ओही हुंदा है फुटफॉल, यानी कि किन्ने लोगों ने टिकट खरीदी हैगी है। मूवी दे टिकट अजकल महंगे हो गए ने, इसलिए 100 करोड़ रुपए कमाना सौखा हो गया। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनन दे लई इह भी देखिया जांदा है कि किन्ने लोगों ने टिकट खरीदे हैगे ने ते मूवी देखण लई लोग गए हैगे ने। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मां ओह हुंदियां ने जिन्हां दे विच फुटफॉल भी ज्यादा हुंदी है, जिवें शो लई हुण तुहानू है कौन अते हम आपके है कौन ते धुरंधर भी इस कैटेगरी दे विच है शोले तो इलावा।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाने वन सर वन एम ते जी आज संदेश अलग दिन से बने हुए हो। हूँ जी मैं वर्ड की गल कर रही हूँ, शायद कई ने पहली बार सुनिया होना है, तो उस वर्ड का नाम है जी स्लीपर हिट। स्लीपर हिट की हों है? स्लीपर हिट तो सिंपल भाषा में समझिया जाए तो स्लीपर हिट वो फिल्म होंगी है जो बिना किसी वे शोर शराबे भारी कम पर कम प्रमोशन या सुपरस्टार के रिलीज़ होंगी है। शुरुआत में इसकी कमाई बहुत घट पर हौली हौली वर्ड ऑफ माउथ के दम से यह फिल्म रफ्तार फड़ती है तो फाइनली बॉक्स ऑफिस से ब्लॉकबस्टर साबित होंगी है। जिमें सैयारा, कांतारा, 12वीं फेल, द कश्मीर फाइल्स वगैरह। स्लीपर हिट विच कॉन्टेंट ही किंग हुंदा है।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट।

मेरी उम्मीद है कि थानू इस सब कुछ जरूर समझ आ गया होना है ना, जरूर समझ आ गया होना, क्योंकि जेड़े बॉलीवुड लवर है कि ने, बॉलीवुड नहीं मूवी लवर्स है कि ने, बेशक कोई भी बॉलीवुड दी देखते हो, टॉलीवुड दी देखते हो, हॉलीवुड दी देखते हो, साउथ दी देखते हो, उन्होंने ये पॉइंट्स इंटरेस्टिंग लगते होंगे जाना नहीं, तो थोड़ा जरूर वधिया लगे होने हैं। बाकी जरूर दसो सानू कि थानू किस तरह की जानकारी तुम चाहते हैं। क्यों रेडियो बिसवानी फेसबुक पेज है जी, तो bisawani@bisawani.com ईमेल आई डी है, जेड़ा भी अपना चाहते हो अपनाओ, सा गलबात जरूर करो। बाकी कल करते मुलाकात, रखो अपना ख्याल, सत श्री अकाल।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 AM. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: May I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अगे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अगे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुशफायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार

0: फिल्मों के क्लाइमैक्स में हीरो जीतता है और लड़की ले जाता है, असल जिंदगी में विलेन।
1: ए विलेन!
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu aaj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di intricacies nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
5: Arshad Lawyers hai tumhari problem ka solution. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
4: अरे वाह, इनका पता बताना।
5: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service. Grab shows off.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। I'm so confused.
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड सनी बैंक हिल्स क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365 दैट्स 3273-7365 और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
3: बेटा आंसू पी के भी जो मुस्कुराए वही तो जमाने को जीत पाए।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
5: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्म आके गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रीज सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, ब्रीज सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

0: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अगे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर एथलीट विलेज शामिल हैं जो के अगे चल के रिहायश लिए वरती जाएगी। असी तुहाडे लिए होर की मुहैया करवा रहे हैं इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हैं। जे तुहानू लगता है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हैं तो इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलां विच अग लगदी है। इह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तों बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुणो। होर जाणो बुशफायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यार मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul ji nu on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: नमस्कार, दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत फ्रॉम द मीत ब्रदर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी पे।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierticket.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय Aussies माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहां से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहां अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435, याद रहे 0400664435, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
5: कुछ बातें कहे जाने के लिए नहीं होती, वो गाई जाती हैं, और जब वो गाई जाती हैं तो कव्वाली बन जाती हैं।

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट, फ्री ऑफ चार्ज। रिंग करे प्रकाश मेनन को, फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

जय श्री कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और गणपति बाप्पा मोरया। प्रणाम भक्तजनों, मैं हूं आपके साथी सताक्षी, एक बार फिर से आपके साथ आपके अपने रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर। आप रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर और आप मेरे साथ सुन रही हैं आराधना। आज भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, यानी अनंत चतुर्दशी। एक तरफ जहां पिछले 10 दिनों से हमारे घरों और पंडालों में विराजमान बप्पा को आज अश्रुपूरित नेत्रों और जयकारों के साथ विदाई दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ संसार के पालनहार भगवान श्री विष्णु के अनंत रूप का पावन पूजन हो रहा है। तो बस आइए रंगते हैं आज बहुत सारे पौराणिक गाथाओं और भक्ति के रंगों में रेडियो प्रस्वानी पर आराधना के जरिए सताक्षी के साथ।

अनंत चतुर्दशी का पर्व अपने आप में बहुत अद्भुत है। एक ओर ये गणेशोत्सव का पूर्णता दिवस है जहां हम कहते हैं अगले बरस तू जल्दी आ, वहीं दूसरी ओर ये भगवान विष्णु की अनंत शक्ति की पूजा का दिन है। अनंत का अर्थ है जिसका ना कोई आदि हो और ना ही अंत। जब जीवन में अनिश्चितता आती है तब अनंत प्रभु की भक्ति ही हमें मानसिक स्थिरता और शांति देती है। इसलिए बप्पा के विसर्जन के इस पावन माहौल में आइए सुनते हैं गणपति का ये भजन। सुनते रहिए रेडियो ब्रजवाणी सताक्षी के साथ।

अच्छा, कभी सोचा है कि हम बप्पा की मूर्ति को पानी में विसर्जित क्यों करते हैं? क्योंकि मिट्टी से बनी मूर्ति जल में जाकर विलीन हो जाती है, और ये हमें सिखाती है कि ये जीवन भी पंच तत्वों का ही एक रूप है। विसर्जन का अर्थ दुखी होना नहीं, बल्कि इस बात का एहसास है कि जो ईश्वर से आया है उसे ईश्वर में ही लौट जाना है। बप्पा जाते जाते हमारे दुखों को भी अपने साथ ले जाते।

आराधना सुन रहे हैं आप रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर। आज आराधना में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अनंत चतुर्दशी। आज के दिन ओम अंताय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने से मन के सारे भय समाप्त हो जाते हैं। अगर आप भी आज व्रत रख रहे हैं तो अपने पूजा स्थल पर 14 गांठों वाला अनंत सूत्र जरूर अर्पित करें। आगे बताऊंगी क्या धार्मिक महत्व है इन 14 गांठों का। सुनते रहिए मेरे साथ आराधना आपके अपने रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर।

इस वाणी पर आप हैं सताक्षी के साथ और सुन रहे हैं मेरे साथ आराधना। आज हम मिलकर मना रहे हैं अनंत चतुर्दशी। शास्त्रों में आता है कि जब महाभारत काल में पांडव जुए में अपना सब कुछ हार कर वन वन भटक रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इस संकट से निकलने के लिए अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की सलाह दी थी। कथा ये भी आती है कि प्राचीन काल में सुमंत नाम के एक विद्वान ब्राह्मण की पुत्री सुशीला ने अनंत भगवान का व्रत रखा और अपने पति महर्षि कौंडिन्य के दाहिने हाथ पर अनंत सूत्र बांधा। इसके प्रभाव से उनका जीवन धन धान से भर गया, लेकिन अभिमान में आकर कौंडिन्य मुनि ने उस डोरे को साधारण धागा समझकर अग्नि में डाल दिया। परिणाम स्वरूप उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। जब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ तो वो पश्चाताप करते हुए अनंत भगवान की खोज में घने जंगलों में निकल पड़े। कौंडिन्य मुनि ने कठोर तपस्या की और उनकी कठोर तपस्या देखकर अनंत भगवान प्रकट हुए और उन्हें क्षमा कर पुनः अनंत सूत्र धारण करने को कहा। आगे बात करेंगे इस अनंत धागे में लगने वाली 14 घाटों की। सुनते रहिए हमारे साथ रेडियो ब्रिस्वानी और सुनते रहिए सताक्षी के साथ आराधना।

चतुर्दशी में आनंद धागा अपने हाथों में बांधा जाता है पूजा के बाद। इस धागे की खासियत ये है कि इसमें 14 गांठें होती हैं जो विशेष रूप से लगाई जाती हैं। ये सामान्य गांठें नहीं होती हैं और ये 14 गांठें जो हैं वो ब्रह्मांड के 14 लोकों का प्रतीक हैं। भू, भुवा, स्वाहा, महा, जना, तपः, सत्यम और हमारे शरीर के 14 प्रमुख मनोविकारों पर नियंत्रण की प्रतीक हैं। जब हम ये डोर बांधते हैं तो संकल्प लेते हैं कि हम धर्म और मर्यादा का पालन करेंगे। अगर आप आज घर पर अनंत भगवान की पूजा कर रहे हैं तो स्नान के बाद एक कलश स्थापित करें, उस पर शेषनाग की शैया पर विराजमान भगवान विष्णु का चित्र रखें, रोली, अक्षत, तुलसी पत्र और पंचामृत से उनका पूजन करें। अनंत डोरे को कच्ची हल्दी व दूध से पवित्र करके पुरुष के दाएं हाथ में तथा महिलाओं के बाएं हाथ में धारण करें। कहते हैं इससे मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।

अनंत चतुर्दशी हमें जीवन की दो बड़ी सीख देकर जाती है। पहली, बप्पा के विसर्जन से मिली सीख कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए मोह को छोड़ना जरूरी है, और दूसरी, भगवान अनंत की सीख कि धैर्य और सत्य का मार्ग कभी मत छोड़िए। अंततः जीत धर्म की ही होती है।

समय आ गया है आराधना से विदा लेने का। आशा है कि आज का दिन और इसकी ये शुरुआत आपके जीवन में बड़ी ही लाभकारी रही होगी और सकारात्मकता और भक्ति से आपका मन अब भर गया होगा। तो चलिए भक्ति की इन्हीं उमंगों को दिल में समाये हुए लेते हैं आज के सफर से अब विदा और अनंत भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी का जीवन खुशहाल हो, सुख संपत्ति और वैभव से भरा हो, सबके जीवन में सुख और शांति हो और सबकी सेहत अच्छी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को एक बार पुनः आनंद चतुर्दशी की ढेरों ढेर शुभकामनाएं।

गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बानी में प्रोग्राम जाने का सफर। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और सभी सुन रहे हैं मेरे साथ जाने का सफर प्रोग्राम। फ्राइडे आ गया है बॉस, मतलब वीकेंड ना ऑफिशियली बस थोड़ी ही देर दूर है। जी हाँ, आज की सुबह रखेंगे फुल पॉजिटिव, फुल एनर्जेटिक और थोड़ी सी फिल्में भी, क्योंकि दोस्तों फ्राइडे की मॉर्निंग में ना अगर म्यूजिक हो, चाय हो और रेडियो ब्रिस्बेन हो तो भाई मूड जो है ऑटोमेटिकली वीकेंड मोड में चला ही जाता है। चाहे आप घर से काम के लिए निकल रहे हैं, स्कूल रन पर है, ऑफिस जा रहे हैं या फिर बस अपनी मॉर्निंग कॉफी इंजॉय कर रहे हैं, तो स्टे विद मी बिकॉज नेक्स्ट वन आवर हम साथ हैं। और ब्रिस्बेन वालों, AFL ग्रैंड फिनाले वीकेंड का एक्साइटमेंट तो आप फील कर ही रहे होंगे, है ना। ब्रिस्बेन लॉयंस और जोफ्री मेंटल सैटरडे को MCG में फाइनल खेलेंगे। तो आइए इसके साथ म्यूजिक सुनते हैं, गाने को एंजॉय करते हैं इस ट्रैक के साथ, ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

वेलकम बैक जी आपके साथ, मतलब आपसे नहीं, वैसे एक सवाल है, आपकी परफेक्ट फ्राइडे मॉर्निंग कैसे होती है भाई? स्ट्रॉन्ग कॉफी, चाय के साथ न्यूज़पेपर, या फिर भाई गाड़ी में लाउड म्यूजिक और सीधा ऑफिस? मुझे लगता है वैसे फ्राइडे की मॉर्निंग का एक अलग ही वाइब होता है। मंडे को हम बोलते हैं बस फ्राइडे कब आएगा, और फ्राइडे आ जाए ना तो बोलते हैं वीकेंड जल्दी से खत्म मत होना। तो आज का मंत्र जो है वो बिल्कुल भाई सिंपल है, जो काम इंपॉर्टेंट है वो कंप्लीट करो, जो टेंशन अननेसेसरी है ना वो वीकेंड के पहले ही दिन जो है छोड़ दीजिए। आइए इसी के साथ सुनते हैं ये नेक्स्ट ट्रैक ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी।

चलिए अब बात करते हैं ब्रिस्बेन और क्वींसलैंड की इम्पोर्टेंट अपडेट्स की। सबसे पहले AFL ग्रैंड फिनाले की बात करें तो भाई ब्रिस्बेन लॉयंस और फ्रेमेंटल के बीच जो ग्रैंड फिनाले सैटरडे जो है यानी ग्रैंड फाइनल सैटरडे को होना है सितंबर यानी 26 को 2:30 PM AEST से MCG में होगा। जी हाँ, और ब्रिस्बेन लॉयंस के फैंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है भाई, जो लैचे नेले हैं उनको AFL अपील्स बोर्ड से अपील के बाद ग्रैंड फिनाले में खेलने की जो क्लियरेंस है वो मिल गई है। तो ब्रिस्बेन में भाई वीकेंड का स्पोर्टिंग जो है एक्साइटमेंट डेफिनेटली हाई रहने वाला है, और अगर आप लॉयंस स्पोर्टर्स हैं ना तो मुझे बताएं आपका ग्रैंड फिनाले वीकेंड प्लान क्या है। आइए इसी के साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

आइए चीज के साथ अब थोड़ा सा वेदर चेक कर लेते हैं। ब्रिस्बेन के लेटेस्ट वेदर अपडेट में पार्टली क्लाउडी जो कंडीशंस है और क्लियरली जो क्लियरिंग शावर्स है उसको मेंशन किया गया है। साथ में भाई फ्रेश साउथ ईस्टर्ली विंड्स भी एक्सपेक्टेड है, तो मॉर्निंग कम्यूट के लिए अम्ब्रेला हैंडी रखना बुरा आइडिया नहीं है। और फ्राइडे है भाई, तो एक लिटिल रिमाइंडर, ड्राइव सेफ, फोन साइड में म्यूजिक ऑन और डेस्टिनेशन पर सेफली पहुंचना सबसे इम्पोर्टेंट है। आइए सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन योर रीड ब्रिस्बेन।

हाँ जी, तो आइए अब चलते हैं इंडिया की तरफ। भाई इंडिया में फेस्टिव सीजन के बीच जो एडिबल ऑयल्स है उस पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी में कट्स अनाउंस किए गए हैं, जिसमें पाम, सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल जैसे ऑयल्स इंक्लूड हैं। रिवाइज्ड ड्यूटी स्ट्रक्चर सितंबर 24 से इफेक्टेड हुआ था। आपको बताएं, स्पोर्ट्स लवर्स के लिए भी अगर बात करें तो एशियन गेम्स 2026 में सितंबर 25 को इंडिया के कई इंपॉर्टेंट इवेंट्स शेड्यूल हैं, यानी आज। तो ऑस्ट्रेलिया हो या फिर इंडिया, स्पोर्ट्स फैन के लिए ये वीकेंड काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आइए इसके साथ पढ़ते हैं आगे, इंटरेस्ट दिखाते हैं इस गाने में। सुनते रहिए रेडियो ब्रिसबेन।

हाँ जी मेरे दोस्तों, एंटरटेनमेंट की बात करें तो आइए थोड़ा सा तड़का लगा ही देते हैं। एंटरटेनमेंट की दुनिया से भी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आई है। जो टेलर स्विफ्ट है, उनका न्यू सिंगल पेशेंट जीरो ऑस्ट्रेलिया में फ्राइडे सितंबर 25 यानी आज रिलीज हो रहा है। तो भाई टेलर स्विफ्ट जो है भाई, उनके फैंस फ्राइडे मॉर्निंग प्लेलिस्ट में एक नया एडिशन रेडी है। और अगर आप ओल्ड स्कूल म्यूजिक लवर है तो डोंट वरी, रेडियो ब्रिस्बेन आपको नई म्यूजिक के साथ वो नॉस्टैल्जिक बॉलीवुड मैजिक भी देता रहेगा। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

बिफोर वी से गुड बाय, एक छोटी सी बात आपके लिए। हर फ्राइडे सिर्फ वीकेंड की बिगनिंग नहीं होती दोस्तों, फ्राइडे एक रिमाइंडर है कि अपने पूरी वीक जो है वो मेहनत की है भाई। तो आज खुद को थोड़ा सा अप्रिशिएट जरूर कीजिए। अगर वीक डिफिकल्ट था ना तो यू सर्वाइव्ड इट, अगर वीक सक्सेसफुल था सेलिब्रेट इट, अगर वीक नॉर्मल था ना दैट्स ओके टू। जी हाँ, लाइफ हर दिन जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होती है। कभी कभी एक पीसफुल मॉर्निंग, एक कप चाय और अपने फेवरेट सॉन्ग के साथ ना स्माइल कर पाना भी काफी है। सो मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट आरजे चानी जान और आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन। सो कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग और फ्राइडे को फ्राइडे की तरह एंजॉय कीजिए। गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन वंस अगेन एंड हैव अ ब्यूटीफुल फ्राइडे।

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701। ये सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। लश्कर जैश अनगाइडेड मिसाइल है, ख्वाजा आसिफ को सता रहा पाकिस्तान के सीरिया इराक बनने का डर। पाकिस्तान आतंकवादियों का पनहगार है। जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा को पनाह देने वाला ये देश अब खुद इस डर में है कि कहीं ये आतंकवादी संगठन पाकिस्तान के ही खात्मे की वजह न बन जाएं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने देश में पनप रहे आतंकवाद की बात कबूली है। ख्वाजा आसिफ को डर सता रहा है कि जैश और लश्कर की वजह से पाकिस्तान का वो हाल न हो जाए जो सीरिया और इराक का हुआ है। अफ्रीका में अंधाधुंध फायरिंग, हमलावर ने घर में घुसकर 11 लोगों को मौत के घाट उतारा। दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी बंदरगाह शहर डरबन से एक बेहद भयावह और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। यहां डरबन के एक टाउनशिप में स्थित घर में कुछ हथियारबंद हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर 11 लोगों की निर्मम हत्या कर दी, जबकि इस खूनी हमले में 3 लोग किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। व्हाइट हाउस में आने जाने की सुविधा विशेषाधिकार नहीं, ट्रंप द्वारा पत्रकारों पर बैन की डीओजे ने बताई वजह। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी फेडरल कोर्ट में एक अहम कानूनी दलील पेश की और कहा राष्ट्रपति के पास सुरक्षा कारणों से पत्रकारों को व्हाइट हाउस परिसर में आने से रोकने का संवैधानिक अधिकार है। न्याय विभाग ने तर्क दिया कि व्हाइट हाउस में प्रवेश पाना पत्रकारों का अधिकार नहीं बल्कि एक विशेषाधिकार है। वॉशिंगटन की अदालत में दाखिल आधिकारिक दस्तावेजों में न्याय विभाग ने प्रशासन के इस कदम का बचाव किया। उन्होंने दलील देते हुए कहा कि संविधान का फर्स्ट अमेंडमेंट प्रेस की स्वतंत्रता देता है, लेकिन ये पत्रकारों को बिना अनुमति व्हाइट हाउस या संवेदनशील सरकारी परिसरों में प्रवेश का असीमित अधिकार नहीं देता। आइए जुड़ते हैं अब भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा धार्मिक वजहों से वंदे मातरम न गाने पर कोई आपराधिक कार्यवाही न हो। वंदे मातरम के सभी अंतरे न गाने पर सजा के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धार्मिक कारणों से कोई व्यक्ति अगर गीत नहीं गाता तो उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा सकती। लाइव लॉ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक के जाने माने संगीतकार TM कृष्णा की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: Hi, this is Amitabh Bachchan.
3: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi, this is Salman Khan.
6: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
9: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
10: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
11: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, और 5 मिनट हो गए हैं 7 बज के, और हमारे साथ आप जुड़े हैं सुबह का सफर में। अभी से लेकर 9 बजे तक हमारा ये साथ रहेगा। तो बताइए क्या हाल है। आज है 25th September, फ्राइडे की सुबह। साथ हमारे सफर कर रहे हैं आप, स्वागत करते हैं आपका, कहना चाहेंगे वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे। मैं हूं आपके साथ ही नीलम, ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से आपको। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे। जो भी आपने प्लान किए हैं उसकी तरफ बड़े ही ओपन थॉट्स लेकर बढ़े, जो भी आप कर रहे हैं आज, और हैप्पी हैप्पी सा रहेंगे आप तो सब ठीक ही होगा। चलिए दोस्तों, सुबह का आगाज करते हैं बहुत ही खूबसूरत से ये गीत के साथ।

दोस्तों 10 मिनट हो गए हैं, 7:00 सुबह का सफर में आप शामिल हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं फोरकास्ट में बताया गया है ब्रिस्बेन के लिए 17 डिग्रीज अभी है, मोस्टली सनी डे रहेगा और आज का टॉप्स रहेगा 25, विंड गस्ट बताया गया है 18 किलोमीटर एन आवर। आज 80% चांस ऑफ रेन बताया गया है, सैटरडे को 35% चांस रेन, संडे को सनी डे रहेगा। मेलबर्न 17 डिग्रीज क्लाउडी डे और 25 टॉप्स रहेंगे। अभी बारिश हो रही है आज, 65% चांस रेन बताया गया है मेलबर्न के लिए। कैनबरा 13 डिग्रीज क्लाउडी डे रहेगा, टॉप्स रहेंगे 26 और आज यहां पर 70% चांस ऑफ रेन बताया गया है। वीकेंड भी बारिश रहेगी। सिडनी 16 डिग्रीज अभी है, सनी डे रहेगा, टॉप्स रहेंगे 26, आज रेन की संभावना है। और ओवर द वीकेंड सैटरडे को सनी डे रहेगा, संडे को 75% चांस रेन बताया गया है सिडनी के लिए। और गोल्ड कोस्ट के लिए बताया गया है 17 डिग्रीज, पार्टी क्लाउडी डे आज है और आज भी यहां पर 100% चांस रेन बताया गया है। और सैटरडे को भी और बारिश रहेगी और संडे को भी रेन बताया गया है। सनशाइन कोस्ट 19 डिग्रीज अभी है, पार्टली क्लाउडी डे रहेगा, टॉप्स रहेंगे 22 और आज ऑब्वियसली क्लाउडी डे रहेगा और विंड गस्ट बताया गया है 31 किलोमीटर एन आवर। सैटरडे को 45% चांस रेन रहेगा, संडे को सनी डे रहेगा। तो वैसे रात को थोड़ी हल्की सी बारिश हुई थी तो सभी जगह फीका फीका सा मौसम है और everything is nicely watered. तो आज अगर आप वॉक पर निकले हैं तो एक अलग सी ताजगी आप महसूस कर रहे होंगे हवाओं में, एंड ड्यू टू द ब्यूटिफुल रेन दैट्स गॉन। और वैसे हल्की सी थी लेकिन इट्स इनफ टू क्रिएट दिस ब्यूटिफुल वेदर। एंजॉय कर रहे हैं आप अपने वॉक पर, हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन, इट्स 7:13। सफर कर रहे हैं, थोड़ी देर में फोरकास्ट ट्रैफिक अपडेट लाएंगे और हौले हौले सफर कीजिएगा अपनी मंजिल की ओर।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
3: क्या आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com पर। For best service, complete legal paperwork, merit certificate and a memorable merit ceremony. Remember the name, Parmanand, your professional and friendly civil merit celebrant since 2003.
4: दोस्तों, सुबह का सफर में आप शामिल है और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ट्रैफिक अपडेट्स नहीं है लेकिन जैसे कुछ हमारे पास आते हैं तो हम जरूर आपको बताते चलेंगे। वैसे आज सेवरल रोड क्लोजर्स है तो अगर आप किधर जा रहे हैं, सिंस स्कूल की छुट्टियां चल रही है तो पहले से पता कर लें कि इनकेस आपको कोई दूसरा रूट लेना पड़े। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।

26 after 7 और इंग्लिश इंग्लिश से ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे, हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत करते हैं आपका। और आप सुन रहे हैं रेडियो बिजवानी, आपकी अपनी पहचान नीलम का साथ है। और दोस्तों कहते हैं कि मनी इज नंबर्स एंड नंबर्स नेवर एंड, इफ इट टेक्स मनी टू बी हैप्पी योर सर्च फॉर हैप्पीनेस विल नेवर एंड, ये बॉब माली ने कहा है। एंड आई थिंक दिस इज सो वेरी ट्रू। चलिए, अगर पैसों से आपको खुशी मिलती है देन आपकी जो खुशियों का जो सर्च है वो कभी नहीं मिलेगा या फिर कभी पूरा नहीं होगा, आप ढूंढते रह जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: वेलकम बैक दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और ट्रैफिक कुछ हमारे हाथ लगा है, और करंट मेजर इंसिडेंट अलर्ट है बेलमोंट में, यहाँ गेटवे मोटरवे पर साउथ बाउंड एग्जिट रैम्प, और यहाँ पर ट्रैफिक, यहाँ पर क्रैश हुआ है, और resulting in closures, Old Cleveland Road exit. The southbound exit ramp onto Old Cleveland Road has experienced a traffic crash, resulting in closures. Expect significant local delays if navigating through the southeast corridor. Pacific Motorway, Woolloongabba, यहाँ पर stationary vehicle is reported northbound heading towards Brisbane City. No lane blockages are currently active, but it is causing localized visual destruction and heavy styling. Nanda mein Buckland Road, yahan par a traffic signal fault has been flagged. All directions remain clear of physical blockages, but treat the intersection with extreme caution. Jindalee Centenary Motorway, the off-ramp to Cinnamon Road and Gogs Road is strictly closed due to ongoing planned roadworks. Dosto, ye kuch update hai. Aur अगर आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इट्स टाइम टू विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। दोस्तों, जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ, और हमारी तरफ से ढेर सारा प्यार। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा गुजरे, और लॉट्स ऑफ लव। और दोस्तों, एनी स्पेशल ओकेजन आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज एनिवर्सरीज है या फिर कुछ खास आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके लिए भी मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत आप सुन रहे थे, और चलिए और भी आगे बढ़ते हैं। और आज आपके ब्रेकफास्ट टेबल पे क्या है, क्या आपने बनाया है आज? लेकिन मैं इसके बारे में सोच रही थी, एंड दो लास्ट टू रेसिपीज जो थे वो इट्स लाइक अगर आप घर पर ही रहते हैं, टाइम है आपके पास, समय है, कुछ लोग बहुत जल्दी जाग जाते हैं एंड देन इवन दो वर्क पर जाना होता है लेकिन यू कपल ऑफ आवर्स अर्लिया आप जाग जाते हैं, सो यू हैव टाइम टू मेक, तो वो भी चलता है। लेकिन जो लोग एकदम से टाइम नहीं रहता है स्पेयर करने के लिए, और आप उस तरह के इंसान हैं जैसे समझ लो अभी आपको आप अपने मिनट्स भी काउंट करते हैं कि ये यू नो कि मुझे इतने टाइम पर निकलना है, इतने टाइम पर ट्रैफिक रहेगा और मुझे ड्राइव करना है, आई शुड बी एबल टू रीच एंड सो इन लोगों के लिए जो ऑन द रन रहते हैं लेकिन अपने लिए दिक्कत खुद पैदा करते हैं क्योंकि वो सभी चीज एकदम से ऑन द स्पॉट करना चाहते हैं लेकिन कभी कभी ऐसा सोचना भूल जाते हैं कि यू नेवर नो क्या ऑब्स्टिकल, क्या हिकअप्स हो सकते हैं रास्ते में। तो उन लोगों के लिए थोड़ा प्रेप आपको शायद रात में करना पड़े, तो उसके लिए ये ओवरनाइट ओट्स रेसिपी हम लाए हैं। और सभी चीज एवरी टाइम कुक करने का रेसिपी अगर देंगे तो आप सोचेंगे कि यू नो देयर इज नथिंग, तो लेट्स हैव सम वैरायटी, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। तो ओवरनाइट ओट्स, ये ब्लूबेरी वाला सुपर फूड ब्लूबेरी ओवरनाइट ओट्स है। यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स है, हाफ कप रोल्ड ओट्स लेंगे आप, हाफ कप अनस्वीटेंड आमंड मिल्क लेंगे या फिर अपना मिल्क ऑफ चॉइस लेंगे, जो भी आपको अच्छा लगता है। ढेर सारे वैरायटी है अभी, अगर आप मिल्क वाले सेक्शन में जाकर खड़े हो जाते हो तो आधे घंटे पूरा बिता दोगे कि मिल्क विद नॉर्मल मिल्क, स्किम मिल्क, लो फैट मिल्क, फिर ओट्स वाला मिल्क, फिर आमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हाफ कप अनस्वीटेंड मिल्क ऑफ योर चॉइस लेंगे, फिर क्वार्टर कप ग्रीक योगर्ट लेंगे फॉर प्रोटीन, एंड वन टेबल स्पून चिया सीड्स लेंगे, और पिसा हुआ फ्लैक्स सीड लेंगे वन टेबल स्पून, वन टी स्पून हनी लेंगे या फिर मेपल सिरप लेंगे, एंड हाफ कप फ्रोजन या फ्रेश ब्लूबेरीज लेंगे, एंड आमंड्स लेंगे या वॉलनट लेंगे, ये आप पर निर्भर करता है, वन टेबल स्पून। एंड इसको रात में ही आप मिलाकर जार में रख सकते हैं या फिर आपका जो सीरियल वाला बोल है उसमें रख सकते हैं, जो भी आपके पास है। बहुत एक्स्ट्रा आपको माइल्स नहीं जाना पड़ेगा जस्ट टू गेट दिस रेडी। जैसे आपको हर जगह आप रेसिपी देखेंगे, देयर इज दिस ब्यूटीफुल मेसन जार जहाँ पर ये ओट्स बना रहता है, तो इतना सारा तकलीफ आपको उठाना नहीं है, बस अपने सीरियल बोल उठाए, इसमें सभी चीज मिला लें, एंड देन रात को अच्छी तरह से कवर करके या ग्लैड रैप करके आप फ्रिज में धर दें, एंड सुबह आप लेकर चले जाए। हाँ, कंटेनर में रखें ताकि आपको ऑफिस ले जाने के लिए या काम पर ले जाने के लिए इजी हो। सो दिस इज व्हाट्स ऑन आवर ब्रेकफास्ट टेबल टुडे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत लाए हैं हम, चलिए सुनते हैं इसको। फिल्म लक्ष्य से इस गीत को हमने लिया।

दोस्तों बहुत ही खुशरुस ये गीत आप सुन रहे थे और चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो कि बच्चों की छुट्टियां हैं, घर पर आप रह रहे हैं, आपने भी छुट्टी ली है उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, या फिर कहीं जा रहे, ऑलरेडी कहीं निकल गए हैं अपने हॉलीडे स्पेंड करने, या फिर घर पर आते हैं देन ट्रेवल करते हैं एंड एवरीथिंग। सो ऑल दीज थिंग्स एंड ऑल दीज एफर्ट्स दैट वी डू टू गिव अवर चिल्ड्रन हैप्पीनेस और अ गुड टाइम, ताकि वो छुट्टियों में थोड़ा चिल आउट कर सके, और ऑल द टॉयज एंड थिंग्स दैट वी मेक, ऑल द मूवी नाइट्स दैट वी डू एंड ऑल द स्पेशल थिंग्स दैट वी क्रिएट, जो आप सोचते हैं कि उनको एन्जॉयबल टाइम देगा। दोस्तों इसके अलावा क्या और आप क्या कर रहे हैं? जो चीज़ें हम उन्हें देते हैं वो शायद कभी वो रिमेम्बर ही ना करें, लेकिन एक परफेक्ट मोमेंट जो आप क्रिएट करते हैं बच्चों के साथ वो क्या है? जैसे कि हम जब एक दूसरे से बात करते हैं, और बेसिकली द वे वी हैंडल डिसएग्रीमेंट्स, या द वे वी अपोलोजाइज, या फिर बी केयर फॉर अनदर पर्सन इफ ईच अदर वन ऑफ देम इज टायर्ड, या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना, या फिर जस्ट क्राइंग विदाउट शेम एंड आस्किंग फॉर हेल्प, या स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस इन द फैमिली। तो जो कभी ऐसा होता है तो आप ये हमेशा याद रखें दोस्तों कि जो बच्चे होते हैं वो जो देखते हैं उसको बहुत जल्दी अब्सॉर्ब करते हैं। आप बताओगे शायद वो नहीं समझे, लेकिन वो देखते हैं तो सीखते हैं। दे अब्सॉर्ब आवर हैबिट्स, दे नोटिस आवर टोन, दे लर्न हाउ वी ट्रीट द पीपल वी लव, एंड स्लोली दीज एवरीडे मोमेंट्स जो होता है बिकम देयर डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज नॉर्मल। तो नॉर्मल अगर आप सोचे, लेट देम थिंक कि काइंडनेस इज नॉर्मल, लेट देम थिंक रिस्पेक्ट इज नॉर्मल, लेट देम थिंक बोथ पीपल डिजर्व टू बी हर्ड, या फिर आस्किंग फॉर हेल्प इज नॉर्मल, एंड टू बी एबल टू क्राई विदाउट फीलिंग शेम, ये। या फिर अगर डिसएग्रीमेंट्स हो, इसका मतलब नहीं है कि आप एक दूसरे के एनिमी हो गए, बिकॉज सभी का अपना अपना नजरिया होता है, तो डिसएग्रीमेंट्स तो सभी होते हैं, जगह होते हैं, लेकिन बच्चों को ये आपको दिखाना है कि डिसएग्रीमेंट्स होना इसका मतलब नहीं है कि आप एक दूसरे के एनिमी हैं। तो ऑल दीज थिंग्स दोस्तों, दिस इज द टाइम जहां पर आप अच्छी तरह से, या फिर एक अडल्ट को ये एक्सेप्ट करना कि आई वॉज रॉन्ग एंड मे बी जस्ट सेइंग सॉरी। सो ऑल दीज थिंग्स नॉर्मल होना चाहिए बच्चों के लिए दोस्तों। तो याद रखे, सिंस बच्चे घर पर है, दे इज मोर टाइम टू ऑब्जर्व, दे इज मोर टाइम टू वर्क ऑन योर सेल्फ एज वेल, कि किस तरह से आप उनके साथ वर्क कर सकते हैं। एंड कुछ नहीं तो ये बच्चे जो है उनका भी एक टाइम रहेगा जब उनकी अपनी फैमिली होनी होगी, तो दिस शुड बी नॉर्मल फॉर देम। सो दिस इज द वे दे शुड बी डिफाइनिंग देयर फ्यूचर। तो इसके बारे में जरूर सोचेगा एंड चलिए आगे बढ़ते हैं।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल, ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ओर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
3: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हैं। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अगे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन, जो के अगे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
4: दिस इज 1:01 और एक घंटे का सफर बाकी है। ब्रिस्बेन में 19 डिग्री अभी है। दोस्तों हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं, स्वागत कर लेते हैं आपका। और न्यूज में है, पुलिस ऑफिसर किल्ड आफ्टर पेट्रोल कार क्रशेज इन सिडनी, एंड अ फीमेल पुलिस ऑफिसर हैज बीन किल्ड व्हेन द पेट्रोल कार शी वाज ट्रेवलिंग इन क्रश्ड इनटू अ ट्री अर्ली ऑन फ्राइडे इन सिडनी। द वुमन एंड अ मेल कोलीग हु वाज ड्राइविंग द मार्क्ड पुलिस व्हीकल वाज रिस्पोंडिंग टू एन इमरजेंसी कॉल इन इनर सिटी सबर्ब ऑफ रेडफर्न अबाउट 1:30 AM। फीमेल कॉन्स्टेबल डाइड इंस्टेंटली, न्यू साउथ पुलिस सेड। Paramedics were called to the scene and treated the male officer before taking him to hospital in a stable condition. A crime scene has been set up and the crash has been declared a critical incident. दोस्तों इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए सुबह का सफर में और आगे बढ़ते हैं।

तो बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुन रहे थे और बेवकूफियों से इस गीत को हमने लिया। और एक्चुअली आगे बढ़ते हैं, जो कि आज घर पर रहने वाले हैं तो क्या प्लान्स बनाए हैं आपने, क्या कुछ कर रहे हैं आज? ऐसे ही आपने सोचा है कि आज एकदम से रेस्ट डे शायद कर रहे हैं, या फिर ढेर सारा वर्क करना है, घर का काम, या फिर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं? और वैसे अगर वर्क फ्रॉम होम, आई जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि कैसा फील होता है, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे ऐसे करने का मौका नहीं मिला, लेकिन लॉट्स ऑफ पीपल आते हैं जो हफ्ते में एक दो बार ऑफिस जाते हैं और दिन घर से काम करते हैं। मस्ट बी रियली फन, शायद मे बी नॉट, तो जानना चाहेंगे हम ज़रूर। लेकिन दोस्तों, अगर रिटायर्ड है, घर पर रहेंगे आज, शायद आपने फ्रेंड्स को इनवाइट किए हैं चाय के लिए। पहले आई बिलीव ऐसा होता था कि किसी को अगर चाय पर आप सोचते हैं बुलाने का, तो इट वाज जस्ट लाइक चाय पे मिलते हैं, इट वाज जस्ट अ सिंपल थिंग, या फिर चाय पर चले, या फिर चाय पिए खे, चाय पिए पीना है आफ्टरनून में, जस्ट इनवाइट, अगर जाते कोई फ्रेंड्स को जाते हुए बगल से घर के देख लिया, फिर बस कार घुमा लिए आ गए, तो इट वाज सो इजी। एंड आजकल आप सोचते हैं इट्स कॉफी, आप अगर कॉफी के लिए जा रहे हैं, यहाँ पर अगर आप सोचते हैं कि चाय पीना है, तो आई डोंट नो, मुझे तो अच्छा नहीं लगता। तो अगर यहाँ बाहर से चाय पीना है, अगर आप कहीं जा रहे हैं, क्या क्या चाय लाटे पीते हैं और क्या, और इट्स नॉट इवन नाइस। एंड और फिर एकदम से हॉट भी नहीं रहता है, जब तक बताओ नहीं कि जस्ट मेक इट एक्स्ट्रा हॉट, एंड देन दे वुड ट्राई एंड मेक इट हॉट। बट यह सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, शायद आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है चाय को लेकर, मेरे पास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है चाय को लेकर, तो घर पर ही जो बनता है वो मेरा मन पसंद है। सो क्या हम कहना चाह रहे थे कि पहले इतना सिंपल होता था कि आप चाय पर बुला लें, एक दो चीज़ें तल लें और कुछ मीठा भी साथ में हो जाए, बगल में, तो चाय इतना अच्छा होता है। एंड जेन एक लॉट ऑफ चाय बनकर फिनिश, खाए पीकर एंड 3-4 घंटे बाद चलो दूसरा, या फिर 2 घंटे बाद चलो दूसरा लॉट ऑफ चाय बनाते हैं। सो इट वाज लाइक दैट, एंड बातें खत्म ही नहीं होती थी। अभी एक अगर कॉफी डेट आपको करना है तो आप उसको 10 बार कैंसिल करोगे, फिर शेड्यूल करोगे, एंड एट द एंड ऑफ द डे आप जा भी नहीं पाओगे। बाय द टाइम आप जाना है आपको, आपका मन भी नहीं है जाने का। इतना इतना डिफिकल्ट क्यों है सब कुछ? एक दोस्तों के साथ केवल एक कॉफी के लिए जाने के लिए आपको इतना टेंशन करना पड़ता है। सो लाइफ इज सो कॉम्प्लिकेटेड, इज इट कॉम्प्लिकेटेड, या हम इसको कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं खुद, इतना सोचते हैं, इतना कि सभी कुछ इतना डिफिकल्ट हो गया है आजकल। सो सिंपल से सिंपल जो चीज़ होती है उसको हम उसको बहुत ही उत्थल पुत्थल करके रखे हुए हैं। सो आई विश लाइफ वॉज ईजिया, एंड विश एवरीथिंग वॉज लाइक जब हम छोटे थे, उतना सोचना नहीं पड़ता था, जो है वो है सामने, और उसके बारे में बहुत दिमाग नहीं लड़ना पड़ता। आजकल एक भी चीज़ होती है तो उसको 10 बार सोचते हैं कि अच्छा चलो, नहीं ऐसा, ओके चलो, ये बात ही यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों। चलिए, काफ़ी दिनों बाद ये गीत लाए हैं हम, आई एम श्योर सबकी पसंद है यह। जब रिलीज हुआ था ये गीत, एवरी वन लव्ड इट, आई एम श्योर अभी भी ऐसे ही है।

तो बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे, और उससे भी खूबसूरत आप इस सॉन्ग का जो डांस स्टेप है, यू नो द ड्रैगिंग द फ्लिप फ्लॉप वाला अल्लू अर्जुन का जो आई एम श्योर इट वॉज अ हिट एक्चुअली. सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे थे और अपने पोस्ट कर रहे थे वीडियोज किस तरह से वो डांस कर रहे हैं, यू नो बिट ऑफ मूवमेंट एंड देन ड्रैगिंग योर फीट एंड योर फ्लॉप्स एंड टुगेदर एंड देन मिसिंग इट समवेयर इन द वे. एनी वे चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं. काफी दिनों बाद ये गीत लाए हैं हम आपके लिए.

0: बस तो बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत आप सुन रहे थे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक एड सुन लेते हैं। एक्चुअली
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार आई एम सो वरीड। एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: मेरी एडवाइस है, गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
2: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
0: दोस्तों सुबह के सफर में आगे बढ़ते हैं और हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत है मुकेश की आवाज में, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कविता है। जहां मन लगे वहां जाया कर, जो लिबास सजे वो सजाया कर, आंखों में आए आंसू अगर तो दिल खोल कर बहाया कर, दुनिया की फिजूल बातों को तू दिल से ना लगाया कर, तू जैसी है बहुत खूबसूरत है, खुद को ये रोज बतलाया कर। बहुत ही खूबसूरत ये कविता, आई थॉट मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आई एम श्योर आपको भी अच्छा लगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। उमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। अते लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वेलकम बैक दोस्तों। और चलिए, हमारे पास एक टिप है। अगर घर पर आप इस्तेमाल करते हैं वुडन स्पून्स, कोई जो डिफरेंट टाइप्स के जो बर्तन होते हैं उसमें आप मेटल स्पून नहीं यूज़ कर सकते हैं ऑब्वियसली, कि स्क्रैचेस ना हो, तो वुडन स्पून की ऐसी बात हो जाती है कि हमारे जो ट्यूमरिक है, जो मसाले हैं, वो अच्छी तरह से उसमें बैठ जाती है। तो उसे किस तरह से आप हटा सकते हैं? तो कहते हैं कि वुडन स्पून को धोने के लिए आप उसको थोड़ी देर तक हॉट वाटर में सोक करें, फिर उसमें डालें आप स्प्लैश ऑफ वाइट विनेगर एंड डिसइनफेक्ट करने के लिए और ओडर्स न्यूट्रलाइज करने के लिए, और इसको स्टर करके एटलीस्ट 10 मिनट्स तक आप उसे रहने दें। एंड देन आप उसको अच्छी तरह से, उसके बाद आप स्क्रब करके एंड रिंस इट एंड क्लीन एंड एयर ड्राइड। और जो ऐसा होता है कि अगर कपड़ों में भी हल्दी जब लग जाती है तो कुछ समय लगता है उसको फ्लाई अवे होने में, यू नो, मूव आउट होने में, लेकिन सिंस लकड़ी है तो इसमें अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाते हैं, यू नो। सो विनेगर का यूज़ कर सकते हैं। अगर एटलीस्ट आप जानते हैं कि अगर विनेगर यूज़ किया है आपने तो इसको आपने डिसइनफेक्ट तो कर लिया है, तो अगर थोड़ी सी अगर हल्दी के स्टेन रह भी गए हैं तो इट शुड बी ओके, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं इसको आपके अपने जो वुडन स्पून है उसको वॉश करने के लिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास एक बीटरूट का फेस स्क्रब रेसिपी है, उसको एंजॉय करेंगे। दिस इज आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम ये गीत लाए हैं। फिल्म पटियाला हाउस से।

0: दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे। और बीटरूट को लेकर स्क्रब हमने फाइंड आउट किया है फॉर स्किन। और सो बीटरूट तो आप तो जानते ही है कि एक्चुअली बीटरूट का जो रेता है वो बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो नेक्स्ट टाइम मे बी जब हम रहेंगे यहाँ पर तो आपके साथ शेयर करेंगे बीटरूट और का रेता विद हरियाली पोटैटो। नाइस। चलिए दोस्तों, बीटरूट फिलहाल स्किन पर यूज करेंगे और ये नेचुरल प्योर और ग्लोइंग प्रॉमिस करता है। सो बेसिकली रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स है, आपके जो स्किन है इसको डिटॉक्सिफाई करता है टॉक्सिन्स और क्लियर स्किन लाता है, हेल्थी स्किन लाता है, एक्नी फाइट करता है, नेचुरल ग्लो रहता है, पिगमेंटेशन जो होते हैं डार्क स्पॉट्स रहते हैं ये इवन आउट करते हैं, एंड आपके जो स्किन है उसको हाइड्रेटेड रखते हैं। सो बेसिकली आपको बीटरूट लेना है छोटा सा एंड उसको वॉश करके पील करके ग्रेट करें और उसका जो जूस है वो आप निकालें। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप जो जूस है बीटरूट का उसको एक टीस्पून हनी से और योगर्ट से आप मिक्स करें। एक्चुअली आपको मिक्स करना चाहिए बिकॉज हनी एंटीबैक्टीरियल भी है और योगर्ट इसमें ढेर सारा हाइड्रेशन है। सो ये दोनों आप मिक्स करें, एक टीस्पून ऑफ बोथ हनी एंड योगर्ट, एंड इसको आप अपने धुले हुए ड्राई फेस में आप लगाएं, इसका जो आपने जो मिश्रण बनाया है मास्क लगाएं क्लीन फेस पर, अपने लिप और आई एरिया को अवॉइड करें, एंड देन इसको 15 मिनट तक एटलीस्ट रहने दें अपने फेस पर, एंड देन उसके बाद आप ल्यूकवॉर्म वाटर से आप अपने फेस को वॉश करें एंड फॉलो अप विद अ ब्यूटिफुल मॉइस्चराइजर। और चलिए दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत ऐसा जो रेसिपी है इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक्चुअली जब मैंने इस रेसिपी को सेव किया था आई थिंक अ मंथ तभी मैंने बीटरूट खरीद कर लाए थे और अभी तक मेरे फ्रिज में है एंड लेकिन अभी तक ख़राब नहीं हुआ है। सो मे बी आई शुड यूज़ इट। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं एंड एंजॉय करते हैं ये गीत।
1: दिल बोले तो
2: हार्ट हार्ट
1: हवा यार सौदा सौदा
2: ओहो
3: दोनों डील करा सील
2: टाइट वेरी टाइट

दोस्तों याद दिला दें कि 9 पर जुम्मा प्रोग्राम है और अब तो जाने का वक्त हो गया है और आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। और आशा है कि आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा गुजरे। हैव अ लवली डे एंड अ ब्यूटिफुल वीकेंड। और मिलते हैं अगले हफ्ते। टिल देन नमस्कार।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अगे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर एथलीट विलेज शामिल हैं जो के अगे चल के रिहायश लिए वरती जाएगी। असी तो लिए होर की मुहैया करवा रहे हैं इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

है रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701, 3279-1701।

और इन यादों को ताजा करने के लिए मैं आपका साथ देता हूं हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक स्टेशन रेडियो 79.1 ब्रिस्बेन पर। आपके साथी फिरोज खान संगीत की जानकार हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक 79.1 ब्रिस्बेन पर।

0: दिलों को झंकृत करे,
1: हवाओं में फिजाओं में दिलकश संगीत से रंग बिखेरे।
2: और अभी से लेकर 10 बजे तक रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर आपके साथ फिरोज खान। आज का दिन शुक्रवार का दिन आप सबके लिए शुभ हो। और आज जुमा है और आप सब सुनने वालों को जुमा मुबारक। आप सबको हमारा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहु। और शुरुआत कर रहे हैं हमारा रेगुलर सेगमेंट आज जुमा है।
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم
4: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

0: सब तरह की तारीफ खुदा ही को सजावार है जो तमाम मखलूकात का परवरदिगार है, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला, इंसाफ के दिन का हाकिम।
1: इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन।
0: ऐ परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं।
1: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين।
0: ہم کو سیدھے رستے چلا ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے۔
2: Here at Radio 79 Brisbane, we have decided to repeat old Juma programs of late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan. As you know, late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan has been presenting radio programs for more than 50 years. Out of his collection of old programs, we'll bring to you selected old Juma programs of late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan in this segment, Aaj Juma Hai. To chalo. आज जुमा है प्रोग्राम आपके खिदमत में, महरूम हजरत मौलाना बशीर अहमद दीवान।
3: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह व कफा व सलाम अला इबादिहि अल्लज़ीन इस्तफा। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीन आमनु तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द व तक़ुल्लाह ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت برادران محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم، اس کا احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمعہ کا برکت و رحمت والا مہینہ، جمعہ کا مبارک دن ہم سب کو نصیب فرمایا ہے۔ مبارک مہینے بھی آ رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج اپنے کرم سے جمعہ کا مبارک دن ہم سب کو نصیب فرمایا ہے۔ دعا کریں کہ پروردگار عالم اس مبارک دن کی برکتیں اور رحمتیں ہم سب کو نصیب فرما دے، اور جب تک یہ زندگی باقی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ مرنے کے بعد ایک مرتبہ بھی انسان سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا، دو رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، اس لیے زندگی یہ قدر کر لی جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت و تابعداری کے ساتھ زندگی گزار کر کے اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ موت آنی ہے، مرنا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، سورج کو نکلتے ہوئے بھی دیکھا اور سورج کو ڈوبتے ہوئے بھی دیکھا۔ وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، اب فکر آخرت کرو، دنیا کو بہت دیکھا، اب فکر آخرت کرو، دنیا کو بہت دیکھا، سب کچھ چھوڑ کر کے جانا ہے، کوئی چیز ساتھ آنے والی نہیں۔ انسان اپنے اعمال کو لے کر کے جاتا ہے، اس کے اعمال پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب گھر سے جنازہ نکلتا ہے، قبرستان کی طرف جنازہ لے جایا جاتا ہے، تو فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور یہ پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں، ما تقدم فلان و ما تاخر فلان، یہ مرنے والے نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا، آگے کیا اعمال بھیجے اس نے، پیچھے اس نے کیا چھوڑا، مال چھوڑا، بیوی اور بچے چھوڑے، کاروبار چھوڑا، اور کیا چھوڑا۔ تو آگے جو اعمال بھیجے ہیں، اگر نیک اعمال بھیجے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا، اس کی نعمتوں سے وہ نوازا جائے گا، اور اگر بدقسمتی سے آگے اعمال برے بھیجے ہیں، نافرمانی والی زندگی گزاری ہے، अल्लाह रब्बुल इज्जत के अजाब से वास्ता पड़ेगा, अल्लाह हिफाजत फरमाए। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया, उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सुबहानहु व तआला ने मुझे बहुत माल दिया है, बहुत दौलत दी है, मुझे अपने माल से बड़ी मोहब्बत है, मरने को जी नहीं चाहता, मौत से डर लगता है, डरता हूं मौत से डरता हूं, माल से मोहब्बत है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको ऐसी तदबीर बताइए कि मुझे अपनी मौत से मोहब्बत हो जाए, मौत का डर निकल जाए। ताजदारे मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो अपने माल को अल्लाह के रास्ते में आगे भेज दे, खर्च कर दे अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह सुबहानहु व तआला के खजाने में तेरे माल पहुंच जाएगा, तेरी नेकियां वहां जमा हो जाएगी, तेरा माल वहां पहुंच जाएगा, तो तुझे अपने माल से जो मोहब्बत है तो तुझे मरने का शौक पैदा हो जाएगा। इतनी बेहतरीन नसीहत थी कि अपने माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करके अल्लाह सुबहानहु व तआला की मुलाकात का शौक और तमन्ना दिल में पैदा हो जाए। कुरान करीम की जिस मुबारक आयत को मैंने इस वक्त तिलावत किया है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के पाक कलाम की पाक आयतें हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा वलतंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाहा इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। ऐ ईमान वालों, ऐ कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह के पढ़ने वालों, अल्लाह से डरो, अपने अंदर खौफ़े खुदा पैदा करो और ये सोचो और ये गौर करो कि कल के लिए तुमने क्या तैयारी की है, कल के लिए तुमने क्या भेजा है। वल तंजो नफ्सु मा कद्दमत लिगत, आने वाले कल के दिल के लिए तुमने क्या तैयारी की है, क्या भेजा है आगे। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो और नेक अमाल कर लो। इन्नल्लाह खबीर बिमा तअमलून, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल से वाकिफ है। वल तंजुर नफ्सु मा कद्दमत लिगद, गौर कर, सोच कि जिस जिंदगी को छोड़ करके तुझे जाना है और जहां तुझे जाना है उसके लिए क्या तैयारी की है। हदीस में आता है कि सरकार दो आलम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान जब दुनिया से चला जाता है उसका अमाल नामा बंद कर दिया जाता है। अब वो न नमाजें पढ़ सकता है, न रोजे रख सकता है, न कोई नेकियां कर सकता है, मामला खत्म हो चुका है। लेकिन मरने वाले ने अपनी जिंदगी में तीन अमाल किए हैं, तो अल्लाह सुबहानहू व तआला मरने के बाद भी उसके अमाल का सवाब उनको बराबर पहुंचाते रहेंगे, जिसको सबके जारिया कहा गया। मरने वाला नेक था, इबादतों में जिंदगी गुजारता था, अल्लाह के दीन पर खुद चलता था, दूसरों को दीन पर चलाने की कोशिश करता था, किसी को कुरान शरीफ पढ़ा दिया, दीन की बातें सिखा दी, नमाजें सिखा दी, वजू सिखा दिया, जितने लोगों को भी उसने पढ़ाया दिखाया और दीन की बातें सिखाई, मरने वाले को मरने के बाद इसका पूरा पूरा जो सवाब मिलता रहेगा। इतना ही नहीं, बल्कि जिन लोगों को उन्होंने सिखाया है और उन्होंने और लोगों को सिखाया है, तो पहले सिखाने वाले को भी बराबर अजर सवाब मिलता जाए रहेगा, क्योंकि सिखाने की इब्तिदा उसी ने की थी, शुरू उसने किया था। यह है सबका इजारिया कि मरने के बाद तुम्हें नेकियां मिलती रहे, तुमने दीन पर चल करके दूसरों को भी दीन पर चलाने की फिक्र की, नमाज सिखा दी, रोजा सिखा दिया, वुजू सिखा दिए, नेक अमाल सिखा दिए, और जितने लोग इस पर अमल करने वाले बनते गए, अल्लाह सुबहानहु व तआला अपने करम से तुझको उसका सवाब अता फरमाएंगे। दूसरा फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मरने वाले ने अपने पीछे नेक औलाद छोड़ी है, मेहनत की थी जिंदगी में अपने बच्चों को नेक रास्ते पर चलाने के लिए, बड़ी कुर्बानियां दी थी, कि मेरी औलाद नेक बन जाए, साले बन जाए, नमाज पढ़ने वाली बन जाए, दीन पर चलने वाली बन जाए, हाफिज कुरान बन जाए, आलिम दीन बन जाए, दीन के दाई बन जाए, दीन की दावत के काम में लगने वाली बन जाए। उसने मेहनत की, उसको अपने औलाद के ऊपर अपने मरने के बाद ही नेक औलाद छोड़ कर गया। यह औलाद इसके लिए सदका जारिया है। बाप की कुर्बानी थी, बाप ने उस पर मेहनत की थी। अल्लाह सुबहानहु व तआला इस नेक औलादों की बरकत से उसके अजर सवाब उनको बराबर अता करता रहेगा। इन एक औलादे नमाजें पढ़ती, रोजे रखते, दिन पर चलते थे। अल्लाह सुबहानहु व तआला इसकी वजह से इसके बाप को, उसके माँ बाप को भी अल्लाह सुबहानहु व तआला इनकी नेकियों का जो सवाब बराबर अता करेगा, क्योंकि इन्होंने इस पर मेहनत की थी, कुर्बानी की थी। ये भी सदका जारिया है नेक औलाद का होना। नंबर तीन पर सरकार दो आलम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मरने वाले को अल्लाह ने माल दिया था, दौलत दी थी, उसने अपनी जिंदगी में अपने माल को किसी मस्जिद के बनाने में लगाया, किसी मदरसे के बनाने में लगाया, कहीं पानी की जरूरत थी तो कुआं खुदवा दिया, पाइप लगवा दिए, जिसे अल्लाह की मखलूक फायदा उठाती है। अपनी दौलत को सही जगह पर लगाया, जिसका सवाब उसको बराबर मिलता रहेगा। इसी को सदका जारिया कहा गया, कि अपने माल को सही जगह पर इस्तेमाल करके गया और उसका सवाब उसको बराबर मिलता जाएगा। सरकार दो आलम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये तीन बातें अगर किसी के अंदर पाई जाए तो ये अल्लाह का मकबूल बंदा है, नेक बंदा है, कि अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर लगा गया, खुद भी नेक बना, दूसरों को नेक बनाया, औलाद को नेक बना कर गया, अपने माल को सही रास्ते पर लगा कर गया। ये आखिरत बनाने वाला अल्लाह सुबहानहु व तआला की रहमतों को हासिल कर देगा। सरकारी दो आदम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी अला साहिब सलात जो मदीना मुनवरा की बरकत और रहमत वाली मस्जिद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जब मदीना मुनवरा तशरीफ लाए और आपने इस जगह के ऊपर मस्जिद बनाने का इरादा किया तो ये जमीन वीरान थी, चक्की मैदान था। अल्लाह सुबहानहु व तआला के हुक्म से आपने इरादा फरमाया इसी जमीन पर मस्जिद बनाई जाएगी, मस्जिद की ताबीर करेंगे। मालूम हुआ कि ये जमीन यतीम बच्चों की है। यतीम बच्चों के रिश्तेदार आए, फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जमीन आप ले लें, मस्जिद बनाए, हम हदिया देते हैं, गिफ्ट देते हैं, बनाए। सरकार दो आलम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं, हम यतीमों को इसकी कीमत देंगे और खरीदेंगे, पैसा देकर इस मस्जिद को खरीदेंगे, इस जमीन को खरीदेंगे, फिर मस्जिद बनाएंगे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन की जमात में ऐसे कामों में सबसे आगे पेश पेश सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस जमीन की जो कीमत होगी मैं इसको अदा कर दूंगा। उन्होंने जमीन की कीमत अदा कर दी और ये पहली जमीन है जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा में खरीदी और इसी पर अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पहली मस्जिद की तामीर की। इतना बड़ा सदका जारिया, फिर ये मस्जिद छोटी पड़ गई, नमाजियों की तादाद बढ़ गई तो उसकी पड़ोस वाली जमीन के खरीदने का इरादा फरमाया सरकारी दो आलम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके लिए तैयार हुए और पड़ोस वाली जमीन खरीद करके मस्जिद के अंदर शामिल कर दी। इनके लिए सदका जारिया हो गया। फिर मदीना मुनव्वरा में जब हिजरत करके हजरत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन मदीना मुनव्वरा आए, मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करके आए, यहाँ पानी की बड़ी तंगी थी। एक यहूदी के पास एक कुआं था, मीठे पानी का। वो बेचता था, फरोख्त करता था। सरकारी दो आदम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, कौन है अल्लाह का बंदा कि उस यहूदी से कुआं खरीद करके ये पानी आम कर दे मुसलमानों के लिए बगैर किसी लालच के, फरोख्त न करे, सदका कर दे, खैरात कर दे, सब पानी पी सकते हैं। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु उस यहूदी के पास तशरीफ ले गए। अब कहा, बताओ इस कुएं की क्या कीमत दोगे? ये कीमत बढ़ाता गया, इतना लूंगा। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला की उसकी मांगी हुई तलब की हुई कीमत, बड़ी से बड़ी रकम उनको दे करके वहां जो है खरीद लिया और ये पानी मुसलमानों के लिए आम कर दिया। इसी का नाम बीरे रुमा है। बड़ा ठंडा पानी, मीठा पानी, आज तक उसका निशान मौजूद है। इनका सब कई जारिया हो गया। हजरत सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अजमईन को ऐसे नेक अमाल के बड़ा एक से नेक अमाल के करने का बड़ा शौक था। ये सारे ऊन फिल खैरात इनकी शान में फरमाया गया कि नेकियों के लिए दौड़ते थे और गुनाहों से अपने आप को बचाते थे। हजरत अबू तल्हा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में मालदार सहाबा थे, मालदार सहाबी थे। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कुछ सदका और खैरात करना चाहता हूं, मेरे लिए सदका जारिया हो जाए। फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं क्या अल्लाह के रास्ते में क्या सदका खैरात करूं? फरमा, तेरा जी चाहे तेरी पसंदीदा चीज जिसको जिसे तू मोहब्बत करता है अल्लाह के रास्ते में खैरात कर दे। फरमा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप गवाह रही है, मेरे खजूरों का बाग जिसमें खजूरें बहुत ज्यादा आती हैं लगती हैं, मैंने अल्लाह के रास्ते में उसको खैरात कर दिया। फिर फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तल्हा, पानी का एक कुआं बना दो जिसे अल्लाह के बंदे फायदा उठाएं। अरे अबू तल्हा अंसारी रजी अल्लाह ताला इसी बाग में या इसके बाहर एक उसको भी खैरात कर दिया, सदका जारिया बना दिया। हजरत सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की शान थी। अरे साद बिन उबादा रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ लाए। फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सफर में था, बाहर गया हुआ था और मेरी वालिदा मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया। अगर मैं होता हूं तो मेरे सामने कोई वसीयत कर जाते, लेकिन मैं सफर में था। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उसकी इस आले सवाब के लिए क्या काम कर सकता हूं, कौन सी नेकी कर सकता हूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो अपने पसंदीदा चीज अल्लाह के रास्ते में खैरात करके दुआ कर, अल्लाह सुबहानहु व तआला तेरी अम्मा को उसका सवाब पहुंचा दे। फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा फला खजूर का बाग है, मैंने अल्लाह के रास्ते में खैरात कर दिया। ये अपने माल को आगे भेज देते थे, अपनी नेकियां आगे भेज देते थे। यकीन था कि इस दुनिया की जिंदगी को छोड़कर जाना ही है। हजरत सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अजमईन इन नेकियों के लिए दौड़ते थे और गुनाहों से अपने आप को बचाते थे। अल्लाह के रास्ते में खैरात करने के जो जज्बात और जो शौक, जो तमन्ना हजरत सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के दिलों में थी, ये उनके ईमान का आला मकाम था, ये उनके ईमान का आला मकाम, आला दर्जा था कि जो भी नेकियां करने का मौका मिल जाता, हजरत सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अजमईन उसके लिए दौड़ते थे और इसके जरिए से अल्लाह सुबहानहु ताला की रजा हासिल करते थे, वो आखिरत की फिक्र करते थे। जो हदीस मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ी, इसमें फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुन फिन दुनिया कअन्नका गरीब औ आबिदु सबील, तो हो जा दुनिया में ऐसा ان فی دنیا غریب غربت کی زندگی تیری ہو, فقیرانہ زندگی ہو. مال و دولت اگر ہے تو اللہ کے راستے میں تو خرچہ جا. ان فی دنیا کن کا غریب او عابر و سبیل, یا اس مسافر کی طرح سے ہو جا جو مسافر یہاں اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں بناتا. یہ دنیا چھوڑنی ہے, یہ دنیا مسافر خانہ ہے اور ہم اس کے مسافر ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو زندگی عطا فرمائی ہے اس میں نمازوں کا اہتمام کیا جائے, دین پر چل کر کے دکھایا جائے اور نیکیوں کی طرف اپنے اندر پیدا کی جائے. خیر کو نئی فلاں و غنیمت شمار عمر, خیر کو نئی فلاں و غنیمت شمار عمر, لا پیشتر کے بانگ پر آئے فلاں امانت. نیکی کرنے میرے بھائی اور اس زندگی کو غنیمت جان لے. خیر کو نئی فلاں و غنیمت شمار عمر, نیکی کرنے میرے بھائی اور زندگی کو غنیمت جان لے. جہاں پیشتر اس سے پہلے یہ آواز لگا دی جائے کہ فلاں دنیا سے چلا گیا. آج دوسرے کی موت کی خبر ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں, ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ہماری موت کی خبر کوئی اور سنے گا. عقل من ہے وہ آدمی, ایمان والی زندگی گزارنے والا ہی عقل مند ہوتا ہے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کر دیں. جانا ہے, یقیناً جانا ہے. مکان کو چھوڑنا ہے, دکان کو چھوڑنا ہے, کاروبار کو چھوڑنا ہے, بیوی اور بچوں کو چھوڑنا ہے. اس لیے یہ دنیا پانی ہے, اس کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے. اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے. حلال روزی کھاؤ, حرام سے بچاؤ. سوکھی روٹی مل جائے حلال کی وہ بہتر ہے اس لذیذ کھانے سے, اس مرغن اور لذیذ کھانے سے جو حرام کا ہو. ایک لقمہ حرام کھانے پر 40 دن تک نماز قبول نہ ہو, عبادت قبول نہ ہو. یہ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی نے 10 درہم کا کپڑا خریدا اور اس کے اندر 1 درہم حرام کا تھا, 9 حلال کے تھے. 1 درہم حلال کا تھا, 10 درہم میں خریدے ہوئے کپڑے میں 1 درہم حرام کا تھا. سرکاری دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. سوچیے اور غور کیجیے, فکر کیجیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. بولنے والا بھی محتاج بنتا ہے. آپ میرے حق میں دعا کیجیے, میں آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں. ہر بھائی, ہر بہن, ہر گھر والا, ہر ایمان والا, ہر انسان ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے, دعا مانگے کہ رب کریم ہمیں اپنے دین پر چلنے والی زندگی نصیب فرما دے, اس سے خاتمہ نصیب فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.
2: ابھی آپ سن رہے تھے آج جمعہ ہے پروگرام میں محروم حضرت مولانا بشیر احمد دیوان. اس اسٹیشن پر آج جمعہ ہے پروگرام آپ سن سکتے ہیں ہر شکوار کو جمعے کے دن 9 سے لے کر قریباً 9:30 بجے.
4: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم.

0: जिंदा जावेद हस्ती जो तमाम कायनात को संभाले हुए है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं है। वो ना सोता है और ना उसे ऊंग लगती है। जमीन और आसमानों में जो कुछ है उसी का है। कौन है जो उसकी जनाब में उसकी इजाजत के बगैर सिफारिश कर सके। जो कुछ बंदों के सामने है उसे भी वो जानता है, और जो कुछ उनसे ओझल है उससे भी वो वाकिफ है, और उसकी मालूमात में से कोई चीज उनकी गिरफ्त इदराक में नहीं आ सकती इल्ला ये कि किसी चीज का इल्म वो खुद ही उनको देना चाहे। उसकी हुकूमत आसमानों और जमीन पर छाई हुई है, और उनकी निगेबानी उसके लिए कोई थका देने वाला काम नहीं है, बस वही एक बुजुर्ग को बरतर
1: और रेडियो सब इंडियन ब्रिस्बेन पर मैं हूं आपके साथी फिरोज खान। हर जुमे के दिन 9 से लेकर 9:30 बजे तक आप सुनते हैं मरहूम हजरत मौलाना बसीर अहमद दीवान के साथ आज जुमा है प्रोग्राम, जिसको हम पेश करते हैं हर शुक्रवार को जुमे के दिन 9 से लेकर 9:30 बजे। और हम आपको याद दिला दें कि हर रविवार को 7 से लेकर 8 बजे तक आप सुनते हैं एक और इस्लामिक प्रोग्राम, जिसमें हम पेश करते हैं हजरत मौलाना फजलदाद के साथ सवाल और जवाब, हर रविवार को 7 से लेकर 8 बजे तक। फिलहाल हर शुक्रवार की तरह हर जुमे के दिन जुमे प्रोग्राम के बाद आपके लिए हम पेश करते हैं चुने हुए रिलीजियस विंटेज कवाले हमारे प्लेलिस्ट से निकाली हुई। यह है रेडियो 1701 और मैं हूं आपका साथी फिरोज खान।

जरा था किस कदर ख्याल नवासों का बरमला। असहाबे मोहम्मद ने मोहम्मद से ये पूछा के उल्फत ज्यादा रखते हो किस नूरे ऐन से। फरमाया मुस्तफा ने हसन और हसन।

0: बरमला।
1: ये इस्लाम बेगर वक्त खतरनाक आएगा, अल्लाह का हबीब भी कुर्बान जाएगा, अल्लाह का हबीब भी कुर्बान जाएगा।
2: रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर आपके साथ फिरोज खान। मैं आपको याद दिला दूं कि हर रविवार के सुबह 7 से लेकर 8 बजे तक आपके लिए हम पेश करते हैं हमारा साप्ताहिक इस्लामिक प्रोग्राम, जिसमें आप सुन सकते हैं सवाल और जवाब हजरत मौलाना फजल दाद के साथ। और हर जुमे के दिन फ्राइडेज को आपके लिए 9 से लेकर 9:30 बजे तक महरूम हजरत मौलाना बशीर अहमद दीवान के साथ आप सुनते हैं जुमा बयान। और फिर 9:30 से लेकर 10 बजे तक आपकी खिदमत में ओल्ड विंटेज कवाली, हमारी पर्सनल प्लेलिस्ट से निकाली हुई चुने हुए ओल्ड विंटेज कवाली।

जैसी कहोगे वैसी सुनोगे, दुनिया का दस्तूर यही है। मुझको भी इनकार नहीं है, तुमको अगर मंजूर यही है। बात शबाबे धार की मानो,

यह है रेडियो 79 ब्रिस्बेन और आपके साथ फिरोज खान। हर जुमे के दिन आपके लिए हम पेश करते हैं 9 से लेकर 9:30 बजे तक मरहूम हजरत मौलाना बशीर अहमद दीवान से जुमा बयान, और उसके बाद 9:30 से लेकर 10 बजे तक आपके लिए हम पेश करते हैं, आपकी खिदमत में पेश करते हैं हमारे पर्सनल प्लेलिस्ट से निकाली हुई चुने हुए मजहबी कवालियाँ, ओल्ड विंटेज कवालीज आपके लिए हर जुमे के दिन 9:30 से लेकर 10 बजे तक। मैं हूँ आपके साथी फिरोज खान और ये है रेडियो 79 ब्रिस्बेन।

कसमों में जुदाई में हर कल में फिदाई में इस सारी खुदाई में बल्कि खुद अपनी दुहाई।

गरज पर मिटने वाले साहेब गम हो नहीं सकते, मुअज्जम हो नहीं सकते, मुकर्रम हो नहीं सकते, बुजुर्गों के मुखालिफ हक के महरम हो नहीं सकते। वो नागारा गुलाम गौसे आजम हो नहीं सकते, जिन्हें अपनी खत

वली अल्लाह के दुश्मन यूं ही गारत होते रहते हैं, हवस के दश्त में उकबा की दौलत खोते रहते हैं, रहे ईमान में नफरत के कांटे बोते रहते हैं। ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जो सबका रोना रोते फिरते हैं, इन्हें रोना तो आता है।

यह है रेडियो 79 ब्रिस्बेन और आपके साथ फिरोज खान। हर जुमे के दिन आपके लिए हम पेश करते हैं 9 से लेकर 9:30 बजे तक मरहूम हजरत मौलाना बशीर अहमद दीवान से जुमा बयान, और उसके बाद 9:30 से लेकर 10 बजे तक आपके लिए हम पेश करते हैं, आपकी खिदमत में पेश करते हैं हमारे पर्सनल प्लेलिस्ट से निकाली हुई चुने हुए मजहबी कवालियां, ओल्ड विंटेज कवालीज आपके लिए हर जुमे के दिन 9:30 से लेकर 10 बजे तक। मैं हूं आपके साथी फिरोज खान और ये है रेडियो 79 प्रिस्बेन।

मां सुलाए।

आप सुन रहे थे कुछ चुने हुए मजबी कवालियां, ऑल विंटेज कवालियां हमारे प्लेलिस्ट से निकाली हुई। रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर मैं हूं आपका साथी फिरोज खान। हर जुमे के दिन शुक्रवार को आपके लिए पेश करते हैं आज जुमा है प्रोग्राम 9 से लेकर 10 बजे तक, जिसके अंतर्गत आप सुनते हैं महरूम हजरत मौलाना बशीर अहमद से आज जुमा है प्रोग्राम, और उसके बाद मजहबी कवालियां। आपको याद रहे हर रविवार को 10 से लेकर 12 बजे तक एक बार फिर मैं आपका साथ देता हूं चुने हुए लोकप्रिय संगीत पुरानी फिल्में से निकाली हुई। तो चलो जाते जाते आपके लिए दो चुने हुए लोकप्रिय भूले बिसरे नगमे।

और ऐसे गीतों से आपका स्वागत करेंगे एक बार फिर हर रविवार को हर रविवार की तरह 10 से लेकर 12 बजे तक। फिरोज खान की तरफ से हैव अ गुड वीकेंड।

0: आपको याद रहे, मैं हूं आपका साथी फिरोज खान है। ऐसे ही गीतों से मैं आपका स्वागत करूंगा आने वाले रविवार को। आपके ले चलेंगे यादों के सफर पर 10 से लेकर 12 बजे तक।
1: दिल से मिला कर देखो,
0: यह है रेडियो ब्रिस्बानी 79.1 ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन्स फर्स्ट 24/7 हिंदी रेडियो स्टेशन।
1: अपना तो बना कर देखो,
0: जी हाँ, अपना तो बना कर देखो। वी प्रेजेंट, यू डिसाइड, यू फोन अस ऑन 3279701। वी लिसन टू यू बिकॉज यू लिसन टू अस।
2: एक दो दिन नहीं, हम आपके साथ हफ्ते में हर दिन चलते हैं, इसीलिए आप भी चलिए 79.1 ब्रिस वाणी के साथ।

गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक रेडियो प्रस्थानी पर एक बार फिर से आप सताक्षी के साथ। और मेरे साथ अब आप सुनने जा रहे हैं अपनी सुबह का सबसे बेहतरीन शो। ये शो है आपके अपने ब्रेकफास्ट का शो, इट हैपेंस। बेहतरीन इसलिए मियां मिट्ठू हम अपने इसलिए बन रहे हैं